पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न करो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचीए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने ते ये जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। आज जेड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर चांदा है, मां दा दर्द उठिया, रिहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी ओनू छड़ देवां, केड़ा है पौ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख में, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामा इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गवांदा है, ते तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया, भुल गई है, याद कर सिंघां दियां मामा कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे हैं।

21 फरवरी नु गुजरात एक दारू से का मुख के कारण सिख हार गए हैं। राजा शेर सिंह नु रावलपिंडी दे इलाके विदा के घेर लिया गया है। ता उधारे दुश्मन खलोता है, सजी हाथ खलो के अंग्रेज अस्त्र दे क्या तलवार रखी है राजा शेर सिंह ने, और क्या है अपनी आंख दे बदले लड़े हैं। ये फिर भी हिम्मत हुंदी ता लड़वते तैयार था, दारू से काम हो गया है, सारे हथियार साधे सो कुछ गए ने, इस वाते मजबूर होके असि आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सारे सिपाहियों के हथियार खोले ने, करो करी पे ही देता गया कि हुन भाई इंसाफ दी वारी आई, जेते रुको खालसा जी, जिसले तगड़े और मारे विच फैसला होवे इंसाफ सदा वाते अन्ना ते बोला हो जाया करदे, केवल बराबर दी ना ताकता विच इंसाफ होया करदे, कमजोर और बलवान विच नहीं। हुन इस तो पहला लड़ाई तो तीन बार ऐलान कीते सन अंग्रेजा ने कि जेड़ा दलीप सिंह दे राग दे बरखिलाफ बगावत नहीं करेगा उसनु कोई सजा नहीं मिलेगी। तो मैं पूछना चाहना हाँ, दलीप सिंह ने की बगावत की थी? वो तो अंग्रेजा रखियाधीन पाव मार्ड थी, मगर उसनु सजा दे दी गई। अखीर दे लगे थे उस मासूम और दोष नु तख्तों फड़ के सजा वास्ते उतार दिता गया भाई।

थी, गरीब थी, घर से जो निकला था वो गरीब, फिर देखना नसीब ना उसका वतन हुआ। इतो कदे आ गया फतेहगढ़ गंगा के किनारे थे, इतने अंग्रेजों की बहुत बड़ी छावनी है, एक बंगले बेचे अमली तौर से कैदी की हैसियत भी है, जिथे जाके दिलीप सिंह रखे आ गया। खैर मैं अर्ज कर रहा थी अपनी पेंशन बदले, उसने कई साल केस चलाया, मुकदमा किया है, दावे किए ने, मगर कदे भी उसका इंसाफ होया नहीं। आओ हूं आप अपनी भाई माने जिन्ना के मुतल कही तलाशी होनी उदो हो ही है जद उस अजे पुत्र का राजपाल भी पिछे बाकी सी, जिसल वह भी खत्म हो गया या जिन्ना चुनाव के किले कैद कर दिता गया। 6 अप्रैल 1849 जिन्ना चुनाव के किले कैद की गई, यह कैद की इन्नी कौखी सी, इसी गल तो अंदाजा लगा लो इन्नी दुख सी दलेरी ना सहन वाली जिन्ना उसे दो हफ्ते भी नहीं कर सकी। 18 अप्रैल साधनी का भेस तार के उतो नस गई। यह दुनिया में की कुछ नहीं वेख्या गया भाई, हेली उपर और उपरी थले आउंदी तकी गई, अरे दुनिया एक अखाड़ा है, तिखलता है तमाशा आई। मैं जीवन खेड विच पुल्ले बड़े बुद्धवान वेखे ने, जो उड़दे अश ते पल विच पड़कदे फर्श ते वेखे, ते पैरां विच रुलदे कई तरे असमान वेखे ने, तखते बैठिया है वेख्या बेकर गुलामां नूं, ते मंदे पी गलियां विच कई सुल्तान वेखे ने, जिन्हां महलां च कलती कर हुंदा सी नाच परियां दा, मैं पैंदे कीर ने अज उह बणे शमशान वेखे ने, जिन्हां गल हीरियां दे हार ते रेशम हुंदे सी ओबियां टुकड़ियां नूं तरसदे इंसान वेखे ने, जिन्हां दे सामने चुकदे सी लखां सिर जवानां दे, वगैरां सामने चुकदे ओही बलवान वेखे ने, जिन्हां दे वट मथे दे कमाउंदे सी जमाने नूं, मैं कहरां जो मिलकदे उन्हां दे अरमान वेखे, कहां कि बे इलम बेसमझ लोकां दी हजूरी विच अकल दे कोट हथ बधी थले हैरान वेखे ने, लड़कदे फांसियां ते वेख्या देश भगतां नूं, ते भगतां दी लिबासां दे लुके शैतान वेखे ने, चलाउंदे वेख्या छुरियां कईआं साध संतां नूं, ते मंदर दे पुजारी वेखदे ईमान वेखे ने, गले मिलदे मुहब्बत नाल मैं वेखे ने दुश्मन वी, ते मित्रां विच हुंदे लहू दे कमसान वेखे ने, अनोखे रंग ने कुदरे जाने कौन सीतल जी, मैं उजड़े वसदे ते वसदे वीरान वेखे ने। सो जिन्हां दी जो हालत इत्थे है असह है, जिसले आसमान विच तकदी है कालियां बदलियां विच तारे डलकदे अंदर आउंदे हन, जिन्हां दी अखां विच वी कदे हंजू डलके आउंदे ने, चेते रखो कि अखां विच डलकण वाले हंजू सदा इक्के मुल नहीं विकिया करदे, कदे मोतियां तो महंगे विकदे ने, ते कदे तेल दीआं बूंदां तो भी सस्ते हो जाया करदे ने। जिन्ना सोचदी है दरिया दीआं लहरां उड़दीआं हन, इन्हां कई बन्ने काए ने, कई किश्तियां डोबियां ने, ते कई जानां लईआं ने, पर इन्हां नूं कैद करन वाला कोई नहीं, क्योंकि कैद रहना परवान नहीं करदीआं। सो जिहड़े कैद रहना परवान नहीं करदे, फड़फड़ा के जां पिंगड़े दीआं सीखां तोड़ दिया करदे ने, जां जान दे दिया करदे ने, कैद सदा उन्हां वास्ते है जो कैद रहना परवान कर लिया कहिंदे ने, जिन्हां ने फैसला कर लिया है मैं इस कैद विचों निकलना। हुण तां की सोचिया जाए भी, अजकल कहा जाता है कि अंग्रेजा ने रिश्वत लेनी सिखाई है, पर मैं तां पिछों पढ़दा चला आया है कि रिश्वत जदों तो यह इतिहास बनिया उस तो चली आउंदी है, उसकी थां दा रब भी रिश्वतखोर मनिया गया है। गल पुराण पढ़ के वेख लो कि उस रिश्वत तो किवें बच सकते ने, जो कोई थोड़ी बहुती पूंजी बची सी, क्योंकि सब कुछ जिंदा ने, जिंदा का खोह लिया सी अंग्रेजा ने, वह थोड़ी बहुती बची हुई पूंजी रिश्वत वजो दे के एक भगवा चोगा लिया है, ते अद्धी रात सिर तो पहला तक भगवा चोगा पहन के बाहर नूं निकल तुरी है। पहरेदार सारे नवे हैं, क्योंकि पुराने बदल दिते गए सन, जिन्हां दी आवाज पहचान नहीं सके, किसले बाहर निकल लगे, पुछया कौन है, जिन्हां ने कहा उदासी संतनी है जंगल विच वसण वाली, महाराणी ने बुलाया सी, सीधे रस्ते आउण दी आग्या नहीं मिली, चोरी आई है, उसनूं अपने धर्म की दीक्षा दे के चोरी चोरी वापस चली जा रही है। पहरेदार ने सोचा जिसने गिरफ्तार कर लिया तो पहला सवाल मेरे से होगा कि बाहरों अंदर क्यों जान दी। सो पहरेदार का डर जिन्ना दी लेरी ओदी रिहाई का वसीला बनी है, निकली है बाहर क्यों, दरिया में छाल मार दी है, लहरा न लड़ती होर कर दी जिंदगी का, अगले पार चली जा रही है, सुनो भाई जिन्ना कि पहुंच रही है, माने जिन्ना फरियाद कर रही है, तरस है पूर्ण दी।

0: नहीं भी आता पर इसके पक्की सत्संग है अगर आगरी नहीं करते और कई विषयों से कई लेट भी आते हैं पर इस समय सत्संग और थोड़े विषयों से कई ऐसे मोड़ ने मेरी गल समझे भी नहीं ये पूरी समझ कि कृष्णा मूर्ति के अवकाश ये पूरी समझ पांच साल पहले स्वामी कृष्णा मूर्ति चलाना कर रहे उन्होंने प्राणा का अंत होया उसे ही आश्रम जैसे अर्थी कटी गई उसे ही दरवाजे जिसे उस गौ ने तड़प तड़प के प्राण ये वाकया दर्द भारत के सारे अखबारों छपया तो पुराना वाकया बाबा सुंदर सिंह जी का चित्र है मैं तो सुखेत जान रहा सियाणा जान रहा सूर्य बुझ रख जंगल में छोड़ के महात्मा बुद्ध जब फिर अपने नगरी की तरफ पर स्थान कर देने क्योंकि समाधि लीन हो चुके सन जंगल के जेड़ा हाथी उन्होंने सेवा करता सी निरंजना नदी तो करमंडल पानी का भर के लिया उच्चे उच्चे दरख्तों को फल तोड़ के जाता से अगों रखता से सारी रात परिक्रमा करता रहता से घूमता रहता से ताकि कोई जानवर महात्मा बुद्ध से हमला ना करे उस जंगल को छोड़ के जब महात्मा बुद्ध जान लगे ने तड़प तड़प के साथी ने प्राण ले मालवी की धरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी ती चालीस सिंघा के नाल जा रहे हैं अचानक घोड़ा रुक गया लगाम खिंच रहे हैं नहीं चलता फिर खिंच रहे हैं नहीं चलता इशारियां नाल चलन वाला घोड़ा अज लगाम खिंचन से भी नहीं चलता सतगुरु ने भी हैरानी हुई मारिया कभी नहीं थी चादर की कभी लौट नहीं थी इशारे नाल चलन वाला पर अज के लगाम खिंचन नाल भी नहीं चलता सतगुरु की दम थले उतरे थले उतरे हाँ सारे दम पलासी मार के काटी के जा बैठे घोड़े का रुख मोड़िया सिंह कह लगे महाराज कि कोई तो पैलिए लंगना सामने हवेली कसी जाना आपने घोड़ा मोड़ लिया इतने बहुत लंबा बंदा पेगा उस हवेली तक जाने वास्ते उस सामने जाना सतगुरु कहने की गल यह है घोड़ा इस पैली वे तो नहीं लगता मैं की कह देखिया तो है तुम मैं लगाम खिंचदा रहा खिच खिच के मेरे हाथ तक गए नहीं चलता मोड़े है मुड़ गया चल रहा है महाराज इस पैली के चो क्यों नहीं लगता सिंगों से दो साल पहले तमाकू भी लिया गया सी घोड़े में पहले बो आ गई है मैनू भी होना सी घोड़ा नहीं लगता इन्ना सहन घोड़ा हाथी गऊ पंछियों के हंस से मोर कि अपनी अपनी दुनिया अगे है पशुओं के चो गऊ अगे है हाथी अगे है घोड़ा अगे है पंछियों के चो मोर अगे है हंस अगे है मनुखों के चो मनुख जो साधु है संत है गुरमुख है ब्रह्मज्ञानी है अगे किस तरह नाचा के मनुखा के मनुख अगे के पिछे एक नुकता बयान करके बाकी खुलासा कल तो सामने करने की मैं कोशिश करांगा पत्थर ने खालसा होना है पत्थर ने खालसा पत्थर ने भगवान पत्थर ने परमात्मा यात्रा से पत्थरों को आरंभ हो पत्थर ने पूरा विकास करना है पहले उसने प्रकृति ने विकास देता है पर जब मनुख बने है तो प्रकृति ने मनुख से जिम्मेवारी करी कि हम तेरी मर्जी भावे पिछे मुड़ भावे अगे क्योंकि वनस्पति के पशुओं में ज्यादा जागे है तो ज्यादा जागे दुख सुख ज्यादा महसूस कर रहा है जितना दुख सुख मनुख महसूस कर रहा है उतने पशु नहीं जितने पशु दुख सुख महसूस करते हैं उतनी वनस्पति नहीं और जितने वनस्पति भी दुख सुख महसूस कर दिए पत्थर बिल्कुल बिल्कुल मनुखा देखा सियाणा मनुख अपना दुख सुख से महसूस करता है दूजिया का भी करता है। हमदर्द हमदर्द का मतलब है दूजे का दर्द भी हूं मेरा दर्द है। दूजा रो रहा है दूजा नहीं रो रहा हूं मैं रो रहा दूजा व्याकुल है ये नहीं मैं व्याकुल दूजा परेशान है नहीं मैं परेशान कितनी इकसारता कोई कर लेता है। जितना सियाणा मनुख होगा उतना दुख सुख ज्यादा महसूस करेगा। सियाणा मनुख जितना दुख महसूस करेगा आम मनुख नहीं करेगा। सियाण दुख की सीमा बढ़ा देंगे सियाणक सुख की सीमा भी बढ़ा देंगे। हम मैं अज तरह एक नुकता बयान करके समाप्ति कर लगा कि बाकी खुलासा कल एक नुकते सरवण कर लेना। 10,000 के करीब किधरे सत्संगी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में बैठे हैं। 10,000 निवासी नमाज पढ़ रहे हैं। 10,000 पुजारी मंदिर की पूजा कर रहे हैं। 10,000 सत्संगी गुरुद्वारे में बैठे हैं। 10,000 श्रद्धालु चर्च में प्रेम कर रहे हैं। एक जगयासू है एक जगयासू जगयासू किसनों कहने हैं जो परमात्मा के प्रति थोड़ा जाग रहे जाग मनुख जागे परिवार के प्रति तो परिवार का पता है। मनुख जागे पदार्थों के प्रति तो पदार्थों का पता है। मनुख जागे धन संपदा के प्रति तो धन संपदा का पता है। मनुख बिल्कुल नहीं जागया धर्म के प्रति परमात्मा के प्रति परमात्मा का कोई नहीं कुछ भी नहीं पता पदार्थ का पता है परमात्मा का है परिवार का पता है निरंकार का नहीं धन का ज्ञान है धर्म का नहीं। जिस जिस के प्रति जागे है वो तो है क्योंकि जिस जिस के प्रति अजय भी उसकी चेतना टूटी गई वो नहीं है उसकी दुनिया च नहीं। 10,000 सत्संगी बैठे हैं एक जगयासू होता है एक जागे होया जिन्हों धर्म का पता क्योंकि पता है परिवार है पर यह भी पता है निरंकार है क्योंकि पता है पदार्थ है पर यह भी पता है परमात्मा है। 10,000 मनुख बैठे हैं गुरुद्वारे मंदिर चर्च मस्जिद एक जगयासू होता है। 10,000 के करीब जगयासु किधरे बैठे होवन एक साधु हो जगयासु जिसन पता चल गया परमात्मा का साधु जो परमात्मा के मार्ग से चल पे मेरा पता ही नहीं चल रहा चल पे मेरा जागे ही यात्रा प्रम कर देती चल पे पूरी तुरंत चल पड़ी उसका ध्यान चल पे हम ध्यान न सुनना। 10,000 के करीब किधरे साधु बैठे हो एक संत होता है एक ब्रह्म ज्ञानी होता है जो पहुंच सकता पहुंच।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

है, कई कोट तपी सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट काब काब विचारे, कई कोट नवतर नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे। गुरु अर्जन महाराज सच्चे पातशाह फरमाते हैं कि वाहिगुरु जी दे अनेक भगत हैं जो अनेक तरीकों नाल उस वाहिगुरु जी की उस्तत करते हैं, पर वाहिगुरु जी का अंत नहीं पा सकते हैं। वाहिगुरु जी आप बेअंत हैं, बेअंत हैं। हजूर फरमाते ने नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। वाहिगुरु जी आप एक भी हैं ते अनेक तरह की उन्होंने रचना रचिया हैं। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, करोड़ा ही जीव वाहिगुरु दे पुजारी हैं। कई कोट आचार व्यवहारी, करोड़ा ही जीव चंगे चरित्र वाले हैं। कई कोट पै तीर्थवासी, करोड़ा ही जीव जंतो वाहिगुरु जी दे प्यारे वाहिगुरु जी दे तीर्थां दे वासी होए हैं। कई कोट बन भरमे उदासी, करोड़ा ही जीव बन विच जंगलां विच उदास होके भरमदे हैं। कई कोट वेद के स्रोते, करोड़ा ही वेदां नूं सुणन वाले हैं। कई कोट तपीसर होते, करोड़ा ही जीव वाहिगुरु जी दे तप विच हैं। कई कोट आत्म ध्यान धारे, करोड़ा ही अपनी आत्मा विच वाहिगुरु जी दा ध्यान करदे हैं। कई कोट कब काब विचारे, करोड़ा ही जीव वाहिगुरु जी दियां पुस्तकां जो कवियां ने लिखियां ज्ञानियां ने लिखियां उसका विचार करदे हैं। कई कोट नवतन नाम ध्यावे, कई करोड़ा ही प्रेमी वाहिगुरु जी का नवे तो नवा नाम का गुण आदि गाते हैं। नानक करते का अंत ना पावे। हजूर कहते ने गुरु अर्जन साहिब महाराज के करता परमेश्वर का अंत फिर भी किसी ने नहीं पाया है। कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेग आत्मनिकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया शरमाए, कई कोट परदेश परमाए, जित जित लावो तिर तिर लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट पै अभिमानी, करोड़ा ही जीव हंकारी हो गए हैं। कई कोट अंध अज्ञानी, करोड़ा ही जीव महा अज्ञानी हो गए हैं। कई कोट कृपण कठोर, कई मन दे कठोर, करोड़ा ही जीव कंजूस ते पत्थर दिल हो गए हैं। कई कोट अपिग आत्म निकोर, करोड़ा ही जीव ना भिजन वाले आत्म तो रहित हैं, आत्मा का ज्ञान उन्होंने बिल्कुल भी नहीं है। कई कोट पर दर्ब को हरे, करोड़ा ही जीव प्राय धन हिरन वाले बन गए हैं, खोदे हैं। कई कोट पर दुख न करे, करोड़ा ही जीव अजहे हैं जो दूजे नूं दुख देंदे हन मनसा वाचा कर्मणा करके। कई कोट माया शरमाए, कई करोड़ा ही जीव अजहे हन जो माया कठी करन वास्ते यतन करदे रहिंदे हन। कई कोट परदेश परमाए, माया इकत्र करन वास्ते परदेसां विच भी भटकदे हन। जे चित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हे वाहिगुरु जी, जिस तरह जीवां नूं तुसां लाया है उदा ही लगे हैं, ये थोड़ी अपनी ही रचना है हजूर। कई कोट सिर जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी,
कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पावन पानी बैसंतर, कई कोट देश सोमंडल, कई कोट सरसियर सूर नहतर, कई कोट देवदान इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूर धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस नस्तारे, कई कोट सिद्ध जति योगी, करोड़ा ही सिद्ध हो गए जति हो गए, योग धारण कीता पाल योगी हो गए, कई कोट राजे रज भोगी, करोड़ा ही जीव राजे होके राज रस भोग दे रहे, कई कोट पंखी सर्प उपाय, करोड़ा ही जीव पंछी बने सर्प बने अजहे जीव बने, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, करोड़ा ही पत्थर वृक्ष जैसे हुए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, करोड़ा ही हवावां पानिया अति करोड़ा ही अग्निया विच होए, कई कोट देश भूमंडल वाहिगुरु की कृपा नाल कई देश बने हन, कई भूमंडल बने हन, कई कोट सस्यर सूर नखत्र, करोड़ा ही चंद्रमा हन, करोड़ा ही सूरज हन, ते करोड़ा ही तारे हन, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, करोड़ा ही देवते हन दैत हन, ते छत्र तारी इंद्र हन, सगल समगरी अपने सूत तारे, गुरु साहिब फरमाउंदे हन जितने भी ये जीव हन उना वे तुसी आप ही सूत धारी हो, उना दी सत्ता आप दे हथ विच है हजूर, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तारे, जिन्हां नूं आप भावे हो महाराज, जो आप नूं भावे हन, जो आप नूं अच्छे लगे हन, उना दा निस्तारा हो गया है, कई कोट राज

अंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिन को मिलियो प्रभु अवनाश कई कोट मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट पै बैरागी करोड़ा ही जीव आप दे दर्शना दे कारण बैरागी हो गए हैं। राम नाम संग तिन लिव लागी वाहिगुरु जी उन्हां दी लिव आप नाल लग गई है ता करके वो हो गए हैं। कई कोट प्रभ को खोजन ते करोड़ा ही जीव वाहिगुरु जी आप नू खोजदे हैं। आत्म में पार ब्रह्म लहंते अपनी आत्मा विच ही अपने आप विच ही ओ आप जी नू लभदे हैं। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास करोड़ा ही जीव ऐसे हैं जिन्हां नू आप दे दर्शना दी प्यास है। तिनको मिलियो प्रभ अवनाश उन्हां नू आप जी दा दर्शन भी होया है उन्हां दी मेहनत नू फल लगा है आपने उन्हां नू दर्शन भी दिता है। कई कोट मांगे सतसंग अजहे करोड़ा होए हैं जिन्हां नू नाम नाल लिव लगी है नाम दा रस आया है ते उन्होंने आप दा संग ही मंगिया है। पार ब्रह्म तिन लागा रंग उन्हां दा मन ते उन्हां दा तन आप दे पवित्र रंग विच रंगिया होया है। जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन हे वाहिगुरु जी जिससे आप प्रसन्न होए हो उसका जीवना धनता दे योग हो गया है। कई कोट खानी अरखंड

प्रसोई कई कोट खानी अरखंड करोड़ा ही खानिया हन करोड़ा ही धरती दे खंड हन कई कोट आकाश ब्रह्मंड करोड़ा ही आकाश हन ते करोड़ा ही ब्रह्मंड हन कई कोट होए अवतार इन्हां विच कई करोड़ा ही अवतार होए हन कई जुगत की नौ बसार वाहिगुरु जी ने कई तरीकिया नाल इस जगत का पसारा कीता है कई बार पसरियो पासार इस जगत का पसारा कई वरा पसरिया है सदा सदा एक एक अंकार पर हे वाहिगुरु जी तुसी सदा ही एक रस रहे हो कई कोट कीने बाऊ भात करोड़ा ही जीव अनेक ही किस्मां दे आप जी ने पैदा कीते हन प्रभ ते होए प्रभ माहि समात वाहिगुरु जी आप तो ही ओ पैदा होए हन ते आप विच ही अंतो गतवा समा गए हन ताका अंत न जाने कोई इना जिया दा कोई अंत नहीं पा सकदा कितने को हो गए हन आपे आप नानक प्रभ सोए गुरु साहिब फरमाउंदे ने हे वाहिगुरु जी तुहाडी इस रचना दा कोई अंत नहीं पा सकदा इस रचना नू ते आप ही जानदे हो कई कोट पार ब्रह्म की दास तिन होवत आत्म

कोट पार ब्रह्म के दास करोड़ा ही वाहिगुरु जी आप दे दास हन। तिन होवत आत्म परगास, उन्होंने आप जी का पवित्र नाम जपिया है ते आपने कृपा करके उन्होंने दर्शन भी दिता है। कई कोट तत् के बेते करोड़ा ही जीव तत् वेते हुए हन। सदा निहारे एको नेत्र, उन्हां गुरमुखां करोड़ां प्रेमियां ने वाहिगुरु जी आप नूं इको ही नेत्र नाल वेख्या है। पाप सब जीआं विच वाहिगुरु नूं ही वेख्या है। सब कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। कई कोट नाम रस पीवै, जिन्हां नूं वाहिगुरु नाम मिठा लग्या है गुरदेव, ओ सदा सदा नाम दा रस पी के ही आनंद चित रहिंदे हन। अमर भय सद सद ही जीवै, अमृत रस नूं पी के ओ सदा सदा चिरंजीवी हो गए हन। कई कोट नाम गुण गावै है, करोड़ा ही जीव वाहिगुरु जी आप दे नाम दा गुण गाउंदे रहिंदे हन। आत्म रस सुख सहज समावै, करोड़ा ही जीआं नूं वाहिगुरु जी दे नाम दा रस आया है ते तीन गुण अतीत होके उस दा मन सहज विच टिक के आप दे चरणा विच समा गया है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सत कुर्बान। सहज सिमरन करके सहज अवस्था नूं धारण करदियां जीउंदियां होया ही ओ सहज भाव नाल आप जी दे विच समा गए हन। अपने जन को सास सास सुमारी, गुरु साहिब फरमाउंदे ने इहो जे प्यारे

प्यारे ऐसे भगती करने वाले भगवान नूं अति प्यारे हुंदे हन, जिवें मावां नूं पुत्तर प्यारे हुंदे हन, इसे तरह भगती करने वाले जो हन ओ भगवान नूं अति प्यारे हुंदे हन। गुरु साहिब फरमाउंदे ने, हे वाहिगुरु जी, तुसीं अपने अजिहे प्यारियां दी

को है दूसरी कोई नानक तिस बल हारण जल थल मैयल सोए अष्टपदी करण करावण करने योग जो तिस पावे सोई होग खिन में थापो थापुण हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे उपजे हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देख पुणी वडियाई नानक सब में रहा समाई। गुरु साहिब गुरु अर्जन महाराज जी फरमाते हैं कि वाहिगुरु ही करता हन ते वाहिगुरु जी ही करन योग हन, वो आप एक हन ते दूजा नहीं है। नानक तिस बलहारण है जल थल मई अल सोए। गुरु साहिब कहते हैं सानू सब नो वाहिगुरु जी तो सदके जाना चाहिए, बलहारे जाना चाहिए। आप वाहिगुरु जी जल विच थल विच मैयल धरती ते पानी विच ते आकाश विच सब थाई आप ही समाए हुए हैं। अष्टपदी करण करावण करने योग, वाहिगुरु आप ही करता पुरश ने, आप ही करन वाले ने, आप ही जिया तो कराउन वाले ने। जो तिस भावे सोई होग, जो वाहिगुरु जी नूं चंगा लगदा है ओही हुंदा है। खिन में थापो थापुण हारा, वाहिगुरु जी आप सर्वशक्तिमान ने, ओ छिन पल विच ही किसी वस्तु नूं रचदे ने ते नाश कर देंदे ने। अंत नहीं किछ पारा वारा, उन्हां दे कीते दा कोई अंत नहीं। सर्व कला समर्थ ने, बेअंत हन, सर्वशक्तिमान हन। हुक्मे धार अतर रहावे, अपनी आग्या विच ही धरती बनाउंदे ने और अपनी आग्या विच ही धरती नूं अपने अधीन रखदे हन। हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्म विच इस धरती दे जीव पैदा हुंदे ने कि उन्होंने अपने हुक्म विच ही उन्होंने समा जाते हैं। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, धरती से जितने भी जीव ने उनका व्यवहार उच्चा या नीवा उस वाहिगुरु के हुक्म के अधीन ही है। हुक्मे अनक रंग प्रकार, अनेक रंगा दे जीव वाहिगुरु ने अपने हुक्म अंदर ही पैदा किए हैं। कर कर देखे अपनी वडियाई, वाहिगुरु जी ने जिया नूं कीता है बनाया है ते उना विच जो गुण पाए ने उना गुणा नूं वेख के अपनी वडियाई विच आप ही मस्त हन। नानक सब मैं रहा समाई। गुरु साहिब फरमाउंदे ने वाहिगुरु जी सब जिया दे अंदर समाए हुए हन।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
4: 250-392-3874. अजूनी सैभं गुरुप्रसाद केतननाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु

संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो, हे सरन जो दयाले दीना नाथ माया करो। शरीर स्वस्थीर्ण समय सिमरन नानक राम दामोदर गुरु साधु। गुरु गुरबाणी विचार उस बुद्धि अनुसार आप जी के सामने आरंभ करा पेश कर सनमन गुरुदेव की पति प्रवान करने धन। गुरु नानक देव जी महाराज के दो बोल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के शब्द को आधार बना के मैं आज इस लड़ी बार विचार आरंभ कर लगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज समर्था बन के मैं उस बारीकियां थोड़े सामने रख सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज के ये बोल श्री राज के दिन रब चले निस सच चले साल का लख पलोए मुकाम ओही एक है नान का सच बगोए। संस्कृत पंजाबी के फारसी में आपके शब्द है भगवत भाषावान है अखर में सदगुरु कहने में सूरज चल रहे हैं चंद्रमा चल रहे हैं तारे चल रहे हैं जमीन चल रही है सारा ब्रह्मांड चल रहा है। दिन रब चले निस सच चले तार का लख पलो न लखे जान वाले न गए जान वाले तारे सूरज चंद्रमा सारा ब्रह्मण चल रहे चल रहे। मुकाम कोई एक है, मुकाम फारसी का लफ्ज है ठिकाना टिके आया। जो चल रहा है कभी टिकता नहीं उन्होंने कहने चंचल चल चल जो चल रहे है चल रहे है चल रहे है चंचल। जो टिके हुआ नहीं चला है मान मुकाम नहीं है। संस्कृत उसके लिए शब्द है निश्चल निश्चल नहीं चल रहा टिके हुआ है निश्चल निश्चल। जो चल रहे हैं चल रहे हैं सदा चल रहे हैं उन्हें कहने चंचल चल रहे चल रहे चल रहे, चल रहे, चल रहे। सतगुरु कहने सारा संसार चंचल है चल रहे चल रहे चल रहे। अगर चल रहे है तो किधरे पहुंचने पहुंचना होगा। अगर चल रहे है तो किसी थान तो यात्रा आरंभ ही होगी। दिन रब चले निस सच चले तार का लख पलो मुकाम ओही एक है सारी चल रहे हैं सब कुछ चल रहे हैं। इनू ईरानी सूफी सन इस तरह बयान कर रहा है अबरो बाग व माग व पलट खुर्शीद दरकार है। सूरज नू परछिम दे खुर्शीद कहते हैं
और चंद्रमा में मां कहते हैं, महाकाल मां। हजरों बारदों मां व फलक खुर्शीद दरकार फलक सारा ब्रह्मंड सूर्य के चंद्रमा तारे सब चलिए सब चलिए सब चलिए सब गतिमान। अगर के सब कुछ चल रहे है तो किधरे पहुंचना होगा, कोई मंजिल पे हो देगी, ऐसे तो नहीं चल रहे। अगर के सब कुछ गतिमान है, चंचल है, चल रहे है, तो यात्रा किधर आरंभ हुई होगी, किसी स्थान को आरंभ हुई होगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज के दो पंक्तियां के अर्थ, इस अर्थ की संपूर्णता मैं धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वाक दे राही करण भी निभाने कोशिश करांगा। वाक पानी चेते होगा, जागृत जोत जगह ने सवासर एक बिना मन मैक ना आने। पूर्ण प्रेम प्रतीक सदे व्रत गोर मरि मत भोल न माने। तीर्थ दान दयागत संयम एक बिना न एक पहचाने। पूर्ण ज्योत जगे घट में तब खालिस तान निखालिस जाने। सारे ब्रह्मंड की जी यात्रा है, इस बीच उसकी जी क्रिया है, उसकी जी गति है और उसका जोड़ा कर्म है, मैल उतार दे जाना है, खालिस हो जाना है, शुद्ध हो जाना है। इसी आंखों के सूरज के चंद्रमा भी मैल है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मैला ब्रह्मा मैला इंद रब मैला मैला है चंद। मैला मलता के वो संसार एक हर निर्मल जाका अंत ना पारावार। निर्मल नो पूर्ण तौर पे शुद्ध नो फारसी के कहने ने खालिस, खालसा लफ्ज भी फारसी है, भारतीय भाषा का नहीं लफ्ज खालिस। अरदास लफ्ज भी परचिन है, अर्जे दास हाथ जोड़ के अर्जोई करने। रहे रास राहे रास हर कीर्त हमरी रह रास। हरी की कीर्ति करना बस यही हरी का मार्ग है, यही सीधा रास्ता है राहे रास। कुछ इसमें रह रास रस्ते भी पूंजी, रास पूंजी रस्ते भी जाओ, क्योंकि रस्ते देखने सब कुछ रस्ते देखने। हाईवे भी अच्छी देखने, कुछ अगे ने कुछ पिछे ने कुछ विस्तार ने, सब कुछ चल रहे है, कुछ अगे है कुछ मजरे देखने, कुछ पछड़े हैं, बहुत पिछे हैं बहुत पिछे। कुछ चलन की तैयारी देखने अनंत पहुंच जाएंगे। इतने में कुछ बुद्धि अनुसार खोलने की कोशिश करांगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज समर्था ने बिन रव चले नित सच चले, सूरज चल रहे चंद्रमा चल रहे जमीन चल रही है ब्रह्मंड चल रहे। किसने चलना कदों आरंभ किया और कितों आरंभ किया, तार्किक थोड़ा गया बौद्धिक तल से गेण वाला मन से प्रश्न लाजमी करेगा, कदों चलना शुरू किया और कितों चलना शुरू किया। मारे केंद्र कदों चलना शुरू किया कि कोई कह नहीं चलना, क्योंकि सूरज के चलन के नाल समा चलिया। जब सूरज नहीं तो समा किता, समय में असी नापते हैं दिन रात करके। महाराज कहने सूरज के नहीं थे, दिन रात भी नहीं,
शब्द में साढ़े सामने रखा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने अरबद नरबद धुंधो कारा, धारण न गगना हुक्म अबारा, धारण न गगना ए जमीन ते गगन नहीं धुंध ही धुंध धुंध। नरा तो पहले, युगा तो पहले, समय तो पहले, सब कुछ तो पहले, धुंधी धुंध। अरबद नरबद धुंधू कारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है, न चंद्रमा सी न सूरज सी सनाता सी सुन सी धुंध सी कुछ भी नहीं। धुंध कितने चिर तक रही नहीं नापी जा सकती, क्योंकि समय नो नापिया जाता है दिन करके रात करके नहीं। फिर अर्थ करा, अगर रात रुक जाए कभी दिन ही ना आवे तो समय नो किवें नापोगे, किस तरह नापोगे? अगर सिर्फ दिन ही होवे कभी रात ना आवे फिर समय नो किस तरह नापोगे? ना दिन रैन चंद न सूरज, महाराज कहने दिन नहीं सी रात नहीं सी, क्यों? सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं सी, तारे नहीं सी, जमीन नहीं सी, आसमान नहीं सी, ब्रह्मांड नहीं सी। ना दिन रैन पहले पातशाह जी के वास में, ना दिन रैन चंद न सूरज सुनने सुन रहा है, सनातन सुन कुछ भी है। किसे ही सनाटे दे किसे ही सुन दे, महाराज कहने एक धमाका हो, एक आवाज हो, फैलती हुई आवाज जो सारे ब्रह्मांड में फैल गई, एक धमाका एक आवाज, आवाज की रूपरेखा भी गुरु नानक देव जी महाराज दस रहे हैं, कलगीधर पातशाह दस रहे हैं, भगत कबीर दस रहे हैं, भारत के करीबन करीबन उपनिषदों के अध्याय ऋषि भी ध्यान करते हैं। जैन धर्म के बाने स्वामी महावीर भी कहते हैं, ध्यान सुनना। और इस नुक्ते को सामने रख के सुनना, असी भी यात्रा देखने रस्ते सुनना, जिसन असी घर कहते हैं घर नहीं है पड़ाव है, जिसन असी अपना परिवार कहते हैं परिवार नहीं है रस्ते का पड़ाव है, रस्ते च मिले साथी है संगी है रस्ते। सहज कहने ने उसे धुंध दे उसे अंधकार दे एक धमाका एक आवाज हुई, जिन्हों जगजी साहब के महाराज इस तरह प्रमाण करते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ, एक कवाओ एक धमाका एक शब्द एक आवाज, यह आवाज कदों हुई किस समय हुई? महाराज कहने किस वार ना जोगी जाने रुत मार ना कोई, जाकर सृति को साजे आपे जाने से। क्यों? दिन के है नहीं सी रात के है नहीं सी, तो फिर किस अंदाजा लाइए धमाका कदों होया, आवाज कदों हुई? समा नहीं जान की पा रहा, अंदाजे हैं विज्ञान के भी अपने अंदाजे हैं, धार्मिक पुरुषों ने भी अपने अंदाजे लाके बयान किए। सतगुरु देव जी महाराज कहते हैं अंदाजा भी बयान नहीं किया जा सकता, अनुमान नहीं जाया जा सकता। वार ना जोगी जाने रुत मार ना कोई, कदों जदों एक धमाका होया कवाओ होया आवाज होगी, आवाज की
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਹ, ਅਨਾਦੀ ਕਥਨੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਇਹ ਕਥਨ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਜੋ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੇ ਲੇਖੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਣਾ। ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਆਦਿ ਧੁਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਲੇਖ ਦੇ, ਓਅੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੁਨ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੇ ਰਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਓਅੰਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਧੁਨ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ ਪੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਕੀਤੀ ਓਅੰਕਾਰ। ਕਿ ਧੁਨਾਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਧੁਨਾਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵਜਾਈਏ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਰੰਗ ਧੁਨਾਕਾਰ। ਓਅੰਕਾਰ ਇਹ ਧੁਨ ਧੁਨਾਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਧੁਨਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਧੁਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਮ ਕੰਡੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਕੰਡੀ ਦੱਖਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਗੌੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਗੌੜੀ ਜੀਤਕੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੌੜੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਚਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੋਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੋਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਥਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਗ ਖੋ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਲੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ, ਫਿਰ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ, ਐਸਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੌੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਕੱਲੀ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਰਾਮਕੱਲੀ ਪੂਰਵ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਮਕੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਵੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਗਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਂਧਰਾ, ਤਮਿਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਰਾਮਕੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ
गौरीपुर की मंडल है। गौरी पूर्व के गायन करो जो आसाम से बंगाल देता है। दक्षिणी राम कली ने धनगुण नानक देव जी महाराज ने जुबानी दसी है, ओदा नाम ओ अंक है। मिथ ए है ब्रह्मे ने संसार की साधना की थी, विष्णु ने संभालिया पालना का भाग और पल्ले लय कर रहा है शंकर। इस मिथ धन गुरु नानक देव जी महाराज जो यथारथ विचार सारे सामने रखते हैं वे ये है ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जन से ओंकार शैल जो है ओंकार देव ने ब्रह्मे तो संसार होया नहीं ओंकार की धुन हुई कि फिर ये धुन जब गतिमान होती रही तो किधरे ब्रह्मा है। सब कुछ इस धुन तो इस धुन को सब कुछ किस तरह होया पीता पसाओ एको कवाओ इससे होए लख दया। उस एक कवाओ तो उस एक धुन तो लखा जिंदगी दे दरिया चल रहे, जिंदगी का दरिया सूरज है। अर्ज करा अगर सूरज ठंडा पै जाए सब कुछ ठंडा हो जाए, कुछ भी नहीं रहेगा। पता है मुर्गे की पहचान की होती है, असि कहने हाथ पैर ठंडे हो खत्म जो ठंडा हो लास्ट के अंदर पानी जो है मिट्टी की ढेरी भी पी है, हवा पहले नो ज्यादा हो गई है, अगन नहीं शांत ठंडा हो जाए हाथ पैर ठंडे। मुर्गे की पहचान इस तरह की जाती है, अग रही है चट लगनी है कि नहीं, हाथ पैरों में गर्माश है कि नहीं, अगर ठंडे हो गए तो कहने पर सूर्य ठंडा हो जाए सब कुछ ठंडा हो जाए। इस तरह के सूरज अनंत ने कई कोट ससियर सूर निखत और जो एक कवाओ होया आवाज हुई उस तो अनंत जिंदगी दे दरिया चलता है भाव करोड़ा सूरज। फिर एक एक सूरज के कई कई टुकड़े जैसे अब सैंसवी बन दिए जमीन सूरज का टुकड़ा उसे का हिस्सा और ये टुकड़े गुरबाणी 14 मन दी है, मोहम्मद साहब ने भी 14 मनना है। इस एक सूरज के टुकड़े जिसके थले अभी जी रहे 14 है तो 14 लोक कहना है, 14 लोक जहें बस्ती ने कांटे कहां पले हैं गुरु गोबिंद सिंह। दुर्ग वे 14 हटनाले जैसे जीते सेवन जा रहे गुरु नानक। मोहम्मद साहब इस 14 तबक कहने और सूरजा के किन्ने किन्ने टुकड़े हुए ये प्रभु जाने ये परमात्मा जाने। जिस सूरज के थले अभी जी रहे जो सानू जिंदगी दे रहे ये 14 टुकड़े क्योंकि सूरज का ही टुकड़ा ये धरती ये लखा साल तक अग का रोला ही रही अग से जी धुंध से किसी तपच नाल पानी बन गई है साचे से पवना भरा पवने हे जल हो जल से त्रिभुवन कर गया घट घट जोश सम हो धुंध पानी बन गई है कि अग का रोला ठंडा होता गया कि अजे भी पूरा ठंडा नहीं होया अजे भी लावे निकल गए अजे भी अग दे दरिया चल गए पूरी ठंडी अजी भी नहीं राघवन से 7 साल पहले भी गल है मनीला फिलपैन एक पहाड़ विचों लावा निकलिया तलहटी के कस्बा से
5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਤਾ ਹੈ। ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਵੇ ਵੀ ਲਪੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਧੂੰਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਪੇ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ। ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪੱਥਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਮੂਦਾ ਮਾਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ, ਯਾਤਰਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗ ਪੱਥਰ, ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਥਰ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ। ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੂਪ ਨੇ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕਠੋਰ ਨੇ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਅਚੇਤ ਨੇ ਹੀ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਗ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਸਾਰਾ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ, ਸਾਰਾ ਬੌਧ ਸਮਾਜ ਬੁੱਧਿਸਟ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ, ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਅਸਵਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਿੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੰਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦ ਰੂਪ ਪੱਥਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੰਗੀ ਅਸਵਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
पत्थर में भगवान बनना है और धीरे धीरे मनुखा तन प्रासुद करने देने हृदय बड़ा कठोर होना है फिर मैंने मनुख लेंगे कि पत्थर का पत्थर होगा अजय भी पत्थर है ऊपरों कोमल हो गया है अंदरों पत्थर का पत्थर कठोर ऊपरों मनुख हो गया है अंदरों से पत्थर भी पत्थर है यात्रा पत्थर तो आरंभ हो गई पत्थर में एक प्रकाशमान हो प्रकृति किस गति देंगी है कि प्रकृति किस पत्थर में चला दी समा पाके वक्त पाके पत्थर मिट्टी बन के वनस्पति की शक्ल में प्रकट हो गया वनस्पति थोड़ी जिया जा रही थोड़ी पत्थर टोटली सस्ता है बिल्कुल सस्ता ऐसे वनस्पति थोड़ी जिया जा रही और वनस्पति में प्यास भी पैदा होगी लोड़ जीवन की होगी जागे की लोड़ होगी सुते की लोड़ नहीं होगी मुर्दे की कोई लोड़ नहीं होगी जो पूर्ण तौर से बेहोश पे है अचेत पे है वो की अपनी लोड़ पूरी करेगा जो थोड़ा जहां जागे है उसने कुछ लोड़ आना है वनस्पति जाग गई पानी चाहिए सुखे थोड़ी जहां जागी है कुमलांदी भी है खिड़ी भी है खेड़ा मुरझाना जीवन देगा खेड़ा मुरझाना जागना सोना फिर जागृति के यात्रा आरंभ हो गई है पत्थर थोड़ा जहां जागे वनस्पति दे रूप तो लोड़ा भी जाग गए वनस्पति थोड़ा जहां दुख सुख भी महसूस कर दी है वनस्पति को प्यास भी लगी सर्दी गर्मी के असर में भी कबूल करती है मौसम का असर भी कबूल करती है खुश भी होती है गमगीन भी होती है सर्दी भी है मुरझांदी भी है और इन प्यास भी होती है हजारों लखों साल की लंबी यात्रा तो बाद वनस्पति पशुओं की शक्ल में प्रकट होगी वनस्पति भी के रूप रेखा पंछियों की शक्ल में प्रकट होगी क्योंकि ज्यादा जाग गए नहीं पशु तो सिर्फ प्यास नहीं है भूख भी पैदा है मेरा पानी पिला के जब उन्होंने जवाया जा सकता घास भी चाहिए उन्होंने भूख भी लगती है मेरे पानी नाल शेर जिंदा नहीं रह सकता उन्हें मांस भी चाहिए उन्हें भूख भी लगती है भूख भी पूर्ति पानी तो नहीं होगी और प्यास भी पूर्ति पदार्थ तो नहीं होगी पानी तो होगी ज्यादा जाग है भूख भी लगी प्यास भी लगी आवाज भी आ गई वनस्पति को आवाज नहीं पशुओं को आवाज भी आ गई पंछी को आवाज भी आ गई और आवाज उन्हों को संकेतक भाषा एक पंछी जब बोल रहे दूजे पंछी कुछ समझ गए कि कह रहे एक पशु जब कुछ बोल रहा है संकेतक भाषा है इशारे दूजा पशु समझ जाता है दूजा चौपाया जानवर समझ जाता है आवाज भी आ गई भुख दे नाल प्यास है प्यास के नाल दुख है दुख सुख भी ज्यादा महसूस करते हैं ज्यादा जागृत जितनी ज्यादा जागृति हो गए सुख दुख का एहसास उतना ही ज्यादा होता है पत्थर में दुख नहीं सुख नहीं पत्थर भी एक पूजा है स्वास्थ्य भी है पत्थर को स्वभाव भगवान जैसा है पत्थर को चेतना भगवान जैसी नहीं है स्वभाव भगवान जैसा है परमात्मा में दुख प्यास नहीं लगती पत्थर में भी नहीं लगती परमात्मा दुख सुख तो ले आया है पत्थर भी ले आया है गमगीन होना खुशहाल होना इस परमात्मा की फितरत नहीं है पत्थर भी नहीं लगता
चार बंदे परमात्मा की उपमा करन के कुछ ऐसा नहीं कि गुब्बारे की तरह फुल गए, कि चार बंदे निंदा करने लग पे ऐसा नहीं तो डेरी डाल के बैठ जाए। किसी पत्थर में 18 गाला कर दो दिखी हो कुछ कि सारा दिन फुल चढ़ा दे रहो मत्था चल दे रहो जो कुछ फुल गए। पत्थर को स्वभाव परमात्मा जैसा है, सिर्फ स्वभाव है, परमात्मा जैसी समझ नहीं, परमात्मा जैसा प्रकाश नहीं, परमात्मा जैसा ज्ञान नहीं, परमात्मा जैसी सूझबूझ नहीं, चेतना नहीं, स्वभाव से परमात्मा जैसा। अगर पत्थर की पूजा आरंभ हुई तो पूरे स्वभाव में देख के ऐ मनुख तो दुख सुख तो न्यारा हो गया, निंदा उस सब तो न्यारा हो गया, चार बंदे किसी की निंदा कर दें तो तेरी ला के बैठ जाए, कि चार बंदे किसी उपमा कर दें कि तेरे वर्गा कोई दानी नहीं, तेरे वर्गा कोई ज्ञानी नहीं, तेरे वर्गा कोई सेवा करने वाला नहीं, गुब्बारे की तरह फुल जाए। पत्थर नहीं फुल गया, चार उसनों गाला करो या सारा दिन उसकी उपमा करो, स्वभाव पत्थर देखो भगवान जैसे ही है, परमात्मा जैसे है। चेतना समझ ज्ञान परमात्मा जैसा प्राप्त करना है, इस वास्ते विद्वानों ने कह दिया ज्ञान ही भगवान है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान गुरु असम उपदेशो नाम दे बहुत लगाओ। स्वभाव से परमात्मा जैसा पत्थर को भी है, सिर्फ ज्ञान नहीं। यात्रा अग्नि शरीर वनस्पति पशु पक्षी फिर मनुख, मनुख दे कोल भुख प्यास से है, आवाज दे नाल नाल अल्फाज भी आ गए, आवाज पंछियों को भी है पशुओं को भी है, अल्फाज नहीं है अक्षर नहीं है, धुन पे है अक्षर नहीं है अल्फाज नहीं है, मनुख को आवाज दे नाल नाल भाषा भी आ गई, अल्फाज भी आ गए, अक्षर भी आ गए। मनुखता का सारा विकास अखरा देखा है, अखरी नाम अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरा फिर संजोग लखा। अगर मनुख को अक्षर ना हो या मनुख को अक्षर खो नहीं है, मनुख उठे चला जाएगा जिसे पशु है जिसे वनस्पति है, पचड़ गए इधर सारा विकास रुक जाए। दूसरा मैं एवियर करा, वेद के कुछ भी नहीं पता चल रहा है ये मनुख की है, वेद के इतना ही पता चलता है इसका रंग कैसा है, गोरा है काला है सांवरा है, कद कैसा है मदरा है या लंबे कद है या मदरा कद है या दरमियाना कद है, उम्र का पता चल जाता है वेद के, बच्चा है जवान है कि बुढ़ा है, मेल है फीमेल है स्त्री पुरुष है, इतना पता चलता है। पर ये मनुख वास्तविक है कि रजो गुणी है तमो गुणी है सतो गुणी है मूर्ख है सैना है शांतमयी है या क्रोधी है कठोर है या दयालु है, कि देख के नहीं पता चलता, क्योंकि बोल से ही पहचानी है, साज असाज को साज अंतर की कर नहीं करे, निकसे मुक्ति बाद पांच दस दिन उसकी संगत करिए, बोल दस दें मेरे मूर्ख है कि सैना है, रजो गुणी है तमो गुणी है सतो गुणी है, उसकी बोलचाल दस दें भी है धीरजवान है ही या क्रोधी है, धार्मिक है या अधार्मिक है, उसका स्वभाव उसके बोलना तो प्रगट होता है। इन साधी इन बयान कर दें ता मर्दे सुखन न गुप्ता वाचल ऐदो हुनर न गुप्ता वाचल, जितने चिर तक पन दस दिन किसी की संगत करके उसकी बोल चाल ना सुनी है, उसके स्वभाव का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, जो पता चल रहा है रंग का पता चल रहा है रूप का पता चल रहा है वस्त्रा कपड़ा का पता चल जाता है उम्र का पता चल जाता है, बाकी नहीं कुछ पता चलता। सारा विकास मनुख का अकरा देखा
पक्षियां देख लो। मनुख ने आज तक जितनी गति की है, तरक्की की है, अखरों के आसरे से की है, और अखर इसके को खोले जान तो फिर मनुख उसे ही चला जाएगा जिसे पशु है। तो मर्द सुखन न भोक्ता वासक ऐबो हनर न भोक्ता वासक धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दफन नामक प्रमाण कर रहे हैं। अमो मर्द बाल शवर सुखन वर न शिक में बिगड़कर दहाने बिगड़। मनुख की पहचान है भाई ये पूर्ण मनुख है, सही मनुख है, सुखन वर उदे मिठे बोल, उदे गहरे बोल, उदे उच्चे बोल, इस गल की तस्दीक कर देने ने मनुख महान है। आपकी जातलीयत का जिड़े बोल उच्चे होंगे वो गहरे भी हो, जिड़े गहरे होंगे वो उच्चे भी होंगे। जिन्हों बोला ने गहराई में नहीं नापया, गहराई तक नहीं पहुंचे वो बुलंदियों में भी नहीं सुन सकेंगे। जिस दरख्त ने अपनिया शाखा आसमान तक ले जानियां उन्हों अपनिया जड़ा पाताल तक ले जानियां। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकया ऊपर भी नहीं हो सके, जिड़ी गल गहरी नहीं वो बहुत उच्ची भी नहीं रहेगी। आपकी यात्रीगत तरह धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के बोल गहरे तो गए, उच्चे तो उच्चे ने तालमेल नहीं गए। किस सदी देखते मैं देखता पे बड़ी मुश्किल थोड़ी बहुत पढ़न की जात आ रही है, अजय भी सुन की जात समझ की जात नहीं है। महाराज आपकी कहने बाहर दिन लोग विचार सिखों की तरज जिंदगी दसती पी है, सत्संगियों की तरज जिंदगी दसती पी है, गुरबाणी नाल अभी संबंध नहीं। नहीं तो जिंदगी बड़ी गहर गंभीर होनी सी और बुलंदियां नुकसान ये बोल बड़े गहरे हैं, ये बोल बड़े कुछ है। मनुख तक विकास प्रकृति ने किया, पत्थर रस्ते देख है, वनस्पति रस्ते देख है, पशु पक्षी रस्ते देखने मनुख भी रस्ते देख है। वनस्पति देख भी अगे पिछे है, कह रहे चंदन गुलाब कुछ फूल कुछ फलदार बूटे अगे है, कुछ बूटे पिछे है। पत्थरों में भी कुछ अगे ने, जैसे मार्बल है संगे मार्बल अगे है, कोमल है थोड़ा कोमल है। पत्थरों में भी कुछ पत्थर अगे ने, जैसे हीरा है नीलम है पन्ना है, कुछ अगे हो गए कीमती हो गए। पत्थर ने भी दसे है मैं कीमती हो सकता, पत्थर ने भी दसे है कुछ चमक मेरे से भी आ सकती है, पत्थर ने भी दसे है कुछ कोमलता मेरे से भी आ सकती है। पर इतनी कोमलता नहीं कह सकी है कि परमात्मा इतना सुंदर नहीं कह सकी है परमात्मा। विकास जारी, वनस्पति देखनी अगे ने पीछे है, चंदन बहुत अगे है बाकी वनस्पति पीछे, पशुआ देखने कुछ अगे ने कुछ पीछे है, हाथी गौ मोर हंस घोड़ा बहुत अगे ने बहुत अगे है बाकी पशु पीछे है। मनुख से पशु की कड़ी है गौ हाथी घोड़ा, अगर एक जानवर मरदे के मरण के बाद मनुख की भजन विकास जारी प्रकृति करती हाथी घोड़ा गौ हंस मोर बड़े बड़े सबूत मिल रहे हैं। हाथियों के गौ के मोरों के दिल दिमाग मनुख जैसा, मैं ये तो नहीं कहता सारिया गौं सारे घोड़े सोचते हैं सारे तो मनुख भी नहीं सोचते, मैं तो यही नहीं कह रहा कि हाथी सारे सियाने आते हैं सारे सियाने तो मनुख भी नहीं आते, पर हाथियों के कुछ हाथी सियाने ने वो हाथियों के छगे वो हाथियों की दुनिया छगे, गौं के तो कुछ गौं सियाणिया ने वो गौं के अगे ने
ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਗਜ ਗੜਾ ਤੇ ਝੂਟਾ ਗਜ ਅਤੀ ਨਸੰਗ, ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਲ ਵਰਨੋ ਰਾਮ ਕਹਿ ਬੰਧਨ ਤੇ ਝੂਟਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕੁਛ ਗਊਆਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੰਚੋ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਫਕੀਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇਰੇ ਕੋਈ ਸੱਠ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਮਾ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 80-80, 85-85 ਸਾਲ ਦੇ, 90-90 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਫਸਟ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਲੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ। ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਗੁਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਲ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੂਦ ਹੇਠ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਤਮਾ, ਕਿ ਚੌਕੇ ਯਾਦੇ ਤੋਂ ਆਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਲਾਇਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਸੂਰ ਉਸੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਗਏ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਕੀ ਤਰਫ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਵਰ ਵਿਸ਼ਤ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਹਿ ਨਿਗਲ ਕਰਿਆ ਸਹਿ ਪੱਥਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਮਲ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਉਪਰੋਂ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਗੈਦਲੀਅਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੈਸੇ ਡੇਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਠ ਗਊਆਂ ਨੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰੋਂਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਾਸ ਘਾਸ ਖਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਚਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਗਊ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋ ਗਊਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੋ ਗਊਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਪਏ ਮੰਗਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਪੈਸੇ ਗਊਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਘਾਸ ਵੀ ਖਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ। ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਮਿਲ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਸੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੋਰਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਦਰਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਗਊ ਰੋਜ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਪੁੱਣ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਗਈ, ਖੜੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਟੋਪੀ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਈ ਲੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮੋੜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਜੈਸੇ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗਊ ਨੇ ਤੜਕ ਤੜਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਉਸ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਜਾਣਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਜਾਣਿਆ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਿਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕਰਮੰਡਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਏ।
मालवी की धरती

सदगुरु एकदम थले उतरे थले उतरदे हाँ सार एकदम पलासी मार के काटी के जा बैठे घोड़े का रुख मोड़िया सिंह कहन लगे महाराज इको तो पैलीए लगना सामने हवेली चली जाना ने घोड़ा मोड़ लिया इतने बहुत लंबा बल्ला पेगा उस हवेली तक जाने वास्ते और सामने जाना सतगुरु कहने की गल यह है घोड़ा इस पैली नहीं लगता मैं की कह देखा तो है तुम मैं लगाम खिंचदा रहा खिच खिंच के मेरे हाथ तक है यह नहीं चलता मोड़े है मुड़ गया चल रहा है महाराज इस पैली क्यों कह नहीं लगता सिंगों के दो साल पहले तमाकू भी दिया गया थी घोड़े में पहले वो आ गई है मैनू भी होना थी घोड़ा नहीं इन्ना सैन घोड़ा हाथी गऊ पंछियों के हंस से मोर की अपनी अपनी दुनिया अगे है पशुओं के चो गऊ अगे है हाथी अगे है घोड़ा अगे है पंछियों के चो मोर अगे है हंस अगे है मनुखों के चो मनुख जो साधु है संत है गुरमुख है ब्रह्मज्ञानी है अगे अगे किस तरह नाशा के मनुखों के केड़ा मनुख अगे केड़ा पिछे एक नुक्ता बयान करके बाकी खुलासा कल तेरे सामने करने की मैं कोशिश करांगा पत्थर ने खालसा होना है पत्थर ने खालसा होना पत्थर ने भगवान पत्थर ने परमात्मा यात्रा के पत्थरों को आरंभ हो पत्थर ने पूरा विकास करना है पहले इसको प्रकृति ने विकास देता है पर जब मनुख बने है तो प्रकृति ने मनुख से जिम्मेवारी चाहिए कि हम तेरी मर्जी भावे पिछे मुड़ भावे अगे क्योंकि वनस्पति के पशुओं में ज्यादा जागे है तो ज्यादा जागे दुख सुख ज्यादा महसूस करता है जितना दुख सुख मनुख महसूस कर रहा है उतने पशु नहीं जितने पशु दुख सुख महसूस कर रहे हैं उतनी वनस्पति नहीं और जितने वनस्पति भी दुख सुख महसूस कर दी पत्थर बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मनुखों देखो सियाणा मनुख अपना दुख सुख से महसूस कर रहा है दूसरे का भी करता है हमदर्द हमदर्द का मतलब है दूजे का दर्द भी हूं मेरा दर्द है दूजा रो रहा है दूजा नहीं रो रहा हूं मैं रो रहा दूजा व्याकुल है ये नहीं मैं व्याकुल दूजा परेशान है नहीं मैं परेशान इतनी एक साल का कोई कर लेता है जितना सियाणा मनुख होगा उतना दुख सुख ज्यादा महसूस करेगा सियाणा मनुख जितना दुख महसूस करेगा आम मनुख नहीं करेगा सियाण दुख की सीमा बढ़ा देंगे सियाण सुख की सीमा भी बढ़ा देंगे हम मैं अज तरह एक नुक्ता बयान करके समाप्ति कर लगा कि बाकी खुलासा कल एक नुक्ते सरवण कर लेना 10,000 के करीब किधरे सत्संगी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च में बैठे हैं 10,000 निवासी नमाज पढ़ रहे हैं 10,000 पुजारी मंदिर की पूजा कर रहे हैं 10,000 सत्संगी गुरुद्वारे में बैठे हैं 10,000 श्रद्धालु चर्च में प्रेम कर रहे हैं एक जगह ऐसी है एक जगह ऐसी है जग्यासु किसनों कहने ने जो परमात्मा के प्रति थोड़ा जाग रहे जाग मनुख जागे है परिवार के प्रति तो परिवार का पता है मनुख जागे है पदार्थों के प्रति तो पदार्थों का पता है मनुख जागे है धन संपदा के प्रति तो धन संपदा का पता है मनुख बिल्कुल नहीं जागया धर्म के प्रति परमात्मा के प्रति परमात्मा का कोई नहीं कुछ भी नहीं करता पदार्थ का पता है परमात्मा का नहीं परिवार का पता है निरंकार का नहीं।

मन आस दर्शनी मानिया सास सास ना करी विसरै पल मूरत दिन राते नानक कारण जो प्यासे क्यों मिलिए प्रभदाते। एक दिनों करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीरे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण परपूरे। फिर दोष ना ही सुखें दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो ना प्यारे। हौ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हौ सिर अर्पी तिसनी प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पिया ता शीश सो पान गुर पे संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेशा बिनवंत नानक कंत मिलिया लोड़ ते हम जैसा। मेरे मन अनंद भया जियो वजीवा दाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया सब मीत बंदप हरख उपजिया दूत थाओ गवाया। अनहतवा जे वजे कर में फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलिया कंत सुखदाई।

संत तरमशाला तरमशाल अपार दयाल ठाकुर सदा कीर्तन गावे जय साध संत एकत्र होवे तहा तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी ओ दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो इक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आरादे छे सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहया अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुधनो तन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक तेस राखी जित लग तरिया संसारे गौड़ी महला पंजवा श्लोक पतित असंख पुनीत कर पुने पुने बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहन हार छंत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो त्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराधिय जम पंथ बिखड़ा अगन सागर निमक सिमरत साधिय कल मले दहता शुद्ध करता दिन सिरैन आरादो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाई है सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भक्ति गाया बिनवंत नानक करो कृपा पार ब्रह्म हर राया चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा में समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगमा पारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोष बिदारो रोग तोग सब दोख बिन से जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सकिए मिल उद्यम करे मनाए ले हर संत मान त्याग कर भगत ठगोरी मोहे साधु मंते सखी वस आया फिर छोड़ न जाई ए रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवार पुनीत कर तिस जंत सुन सकिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाई है सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाय कल कलेश मिटे प्रम नाते मन चिंदिया फल पाई है पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आई है सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग
समरथ पुरख मिलाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड पागी माए। सकी नाल वसा अपने ना प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया, सो सखिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया, प्रम कोयो सांत सह स्वामी, परगास पया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। इको अंकार सतगुरु प्रसाद गौरी बावन अखरी महला पन्नवा श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूर पापी

जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग। पौड़ी ओम साध सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे अस्थूला।

तुष्टारं सगल पांत कर करें उपायो, जन्म मरण मन मोह बढ़ायो, दोहू पाप से आप निरारा, नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास, नानक सच पुछ पाई ते संतन के पास। पवड़ी सत सा सत सत सत को सत पुरख ते पिन न को, तो शरण पर जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं, संशय परम नहीं कछ व्यापते, प्रगट प्रताप ताहू को जापते, सो साधु ए पहुंचन हारा, नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते, माया मोह सब कू

काज रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहो जो एक छाड़ अनकते न जाहो जा कही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक देख अर ज्ञान ध्यान मन हथ

नानक जाको कृपा धारी। श्लोक आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पस्तोर, नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर। पौड़ी या जुग में एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छदाना देवन हार मने बिसराना, तारो कृपा जिसे गुसाई

से मोह मगन मीठ जोन पासे इन माया त्रै गुण बसकी ने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाके करो विखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप पस आपन हो करे नानक बिन हर कहा कमात। पौड़ी एक आप करावन हारा आपे पाप पुन विस्थारा या जुग जित जित आपे लायो तो सो पायो जो आप दिवायो ओ आता अंत न जाने को जो जो करे तो फुन हो एक के सगला विस्थारा नानक आप सवारन हारा। श्लोक रात रहे बनसा विनोद कुसुम रंग दिख तोर

लेखे गणत न छूटी है काची पीत न शुद्ध जिसे बुझाए नानका तिह गुरमुख निर्मल बुद्ध। श्लोक टूटे बंधन जास के हो साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग। पौड़ी रारा रंग या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुखदेव। ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपे नानक कर ताके। श्लोक लालच झूठ विकार मोह व्यापक मूड़े अंग लाग परे।

अनहार होत सज आया, ओ आपा अंत न काहू पाया। कीत हस्त में पूर समाने, प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने। जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तेह जपना। श्लोक आत्म

आया सफलताओं को गनिए, जात रसन हर हर जस पन्ने, आए बसे साधु के संगे, अंदिन नाम ते आवे रंगे, आवत तो जल नामे राता, जा को दया मया विदाता, एक आवन फिर जोन ना आया, नानक हर के दर्श समाया श्लोक, यास जपत मन होए आनंद, बिन से दूजा पाओ, दुख दर्द

जे आसर ए अपवजल करना यैया जन्म ना आवे तो एक नाम ले मने परो। यैया जन्म ना हारिए गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जाके ही रहेत। श्लोक अंतर मन तन बस रहे तीत ऊत के बीत गुरपुरे उपदेशया नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए। ता को मात पिता सुत किया ग्रे बनता कत संग न लिया ऐसी संच।

गंगा फट शास्त्र हो आता, पूरक कुंभक रेचक कर माता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी, सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनो सौ अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दिशा कर्म कीर्ति रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी सत्ता कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को, नहीं होत कछ दो बारा, करने हार न पूलन हारा, काहू पंथ दिखारे आपे, काहू उद्यान परमत पछतापे, आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। श्लोक खात खर्चे

पौड़ी थक्का खूना कछ नहीं तिस समरथ कहता है जो देना सो दे रहे हो पावे कहते जाए खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रात खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास।

श्लोक। गन मिन देखो मने माहे, सर पर चलनो लोग, आस अनित गुरुमुख मिटै, नानक नाम रोग। पौड़ी। गद्दा गोविंद गुण रमो, साफ साफ जपनीत, कहां बिसासा देता, विलम न करहो मीत। नह बारक नह जोगने, नह बिरदी कछ बंद, ओ बेरा नह बूझिए, जो आए पर जम फंद। ज्ञानी त्यानी चतुर्पेख, रहन नहीं इक ठाए, छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रहे, जाहू मस्तक पाग, नानक आए सफल ते, जाको प्रिय सुहाग। श्लोक। कोते शास्त्र वेद सब, आन न कत्तो कोए, आज जुगादि हुण।

जटकत ओही समाहे, पूले को मन जो आवे सरना, नाम सतकल मह पुनः चरना, काल काल अनिक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुर जाको दिया। श्लोक काले सब दिवस पास,

जो साकत प्रभु कीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न सीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा।

प्रगट पए नानक ने छपया श्लोक। चित चितवो चरणार बिंद ऊद कवल बिकसांत, प्रगट पए आपे गोविंद नानक संत मतांत। पौड़ी। सच्चा चरण कमल गुर लागा, तन तन ओ आ दिन संजोग सभागा। चार कुंट दह विश्रम आयो, तई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन क्यों सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ।

वंतति ब्रह्मलिया अमृत फल पाए में साधु सुख उपजे लक्ष्मी सब छाई नानक से।

0: आप सुन संतान
1: भोले मेले के पुरब दी
0: बहुत बहुत वधाइया सतगुरु जी सारिया का आया प्रवान करके हाजरियां लेखे चलान फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह।
3: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउन लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
4: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
5: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
6: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

साथ दीप कुए पर मन जान सब बात जान बूझ के बावरे तें काज बिगाड़ो। नौवें पातशाह महाराज जी का वचन है, इंसान जान बुझ के अपना काम तू बिगाड़ रहे हैं, जान बुझ के अपने पैरां ते आप कुहाड़ा मार रहे हैं, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, जान बुझ के बावरे तें काज बिगाड़ो, पाप करत सुकच्यो नहीं न गर्भ निवार्यो। पाप करन लग्यां संकोच नहीं कीता, बकरे वड्डे ते खादे, मुर्गियां दियां धौणा मरोड़ियां ते खादे, कोई ग्रंथ नहीं ए आग्या दिंदा। कहिंदे जी गुरबाणी विच किथे लिखे है वी मीट नहीं खाना चाहीदा। असीं उहनां नूं पुछदे हां वी तुसीं इह दसो वी किथे लिखे वी खाना चाहीदा। असीं सिद्ध कर सकदे हां वी नहीं खाना चाहीदा। पहलां तां वैसे ही आपां सिद्धियां जिहां उदाहरणां द्वारा जे देखिए, जिहड़े जानवर मीट खाण वाले ने ना मांस खाण वाले, उन्हां दे दंद तिखे ने सत्संग, जिस तरह चूहा है, बिल्ली है, शेर है, उहदे दंद मूहरों तिखे ने और मुड़मे भी हन। पर जिहड़े घा खाण वाले जानवर ने, जिवें घोड़ा है, गऊ है, इस तरह इंसान है, ये दंद अपने जिहड़े ने उन्हां वर्गे नहीं। इथों भी गल सिद्ध हुंदी है वी साडे वास्ते मीट मास खाना मनमत है, पर खाई जा रहे ने। खैर जानी मन जानना सब बात, महाराज जी दा ये वचन कबीर साहब जी दा, जानदा है सब कुछ, पर जान बुझ के यह गलती करदा, जान बुझ के यह किनूं नहीं पता वी शराब माड़ी है। अज डाक्टरां ने भी यह गल सिद्ध कर दिती, हालांकि तीसरे पातशाह महाराज जी तां 500 साल पहला यह वचन लिख गए ने, जित पीता मत दूर होए, वरल पवै विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमों धक्के खाए। वी जिहदे पीण नाल माते दी ठिकाने नहीं रहिंदी। अज अमरीका दे डाक्टरां ने यह गल सिद्ध कीती है सत्संग, कहिंदे बंदे दे दिमाग विच 25 अरब सैल हुंदे ने, पर जदों एक पेग पींदा है 10,000 सैल डेड हो जांदे ने, मुड़के जिउंदे नहीं हुंदे। ओह ज्यों ज्यों डेड हुंदे जांदे ने, क्योंकि दिमाग दे आसरे, दिमाग कंट्रोल करदा सारे शरीर नूं। तदे फिर शराब पीण वाले दे हाथ पैर अपने कंट्रोल च शरीर नहीं रहिंदा। जदों हर रोज ही पीनी है बोतलां दीयां बोतलां पीनियां ने, ते फिर एक दिन ऐसा आ जांदा उह पागल हो जांदा है, जां उहदियां किडनियां फेल हो जांदियां ने, जां उहदा मेदा बिलकुल जो कम करना छड दिंदा है, ते फिर डाक्टर इत्थों तक उहनां दी नौबत आ जांदी है, कहिंदे वी जे पीएगा तां वी मरेगा, जे नहीं पीएगा तां वी मरेगा, पर वो फिर पी के ही मरदे ने। सो ये कोई लाके गल नहीं, सात संगत हे साडे भले वास्ते गुरु महाराज ने 500 साल पहला वचन लिखे है, डॉक्टर तो हुण सिद्ध कर रहे ने ना। सो ये शराब चंगी नहीं। गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरणा विच एक शराबी बंदा जिहदा नाम सी चौधरी मलुका, पर शराब पींदियां पींदियां उहनूं मिर्गी दा दौरा पैण लग गया, बड़ा दुखी है, बड़े इलाज कराए, अखीर किसे गुरमुख ने दस्सिया वी गुरु महाराज दे चरणा विच बेनती कर, तेरा ये रोग दूर हो सकदा जो वचन कर देण आया। दुखी हो के इंसान गुरु दे चरणा विच आउंदा, दुख लागा तां राम पुकारा है, जे सुख विच ही आ जावे हो सकदा दुख लगे ही ना तैनू, काम परे हर सिमरी है ऐसा सिमरो नित। कबीर साहब जी दा वचन, भाई दुख पैण वेले गुरु नूं याद करदा है, जे नित ही याद कर लिया कने
ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ।

असंख निंदक सिर करहें पार, नानक नीच कहें विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव संख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहें सिर पार हुए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिन ये लिखे तैस सिर नाहे, जैव फुरमाए तिवत पाए, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावे नाही को थाओ, कुदरत कवण कहा विचार, मारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे ऐसा ही पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिया हथ पैर तन दे, पानी धोता उतर सुखे, मूत बलीती कपड़ होए, दे साबून लइया उतोए, भरिया मतवा पंख संग, ओह धोपे नावे कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जा, आपे बीज आपे ही खाह, नानक हुक्मी आव जा, तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे दिल का मान, सुनया मनया मन कीता भाव, अंतरगत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मनाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए, स्वास्थ्य आतबाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ, कवण सुबेड़ा भक्त कवण, कवण खित कवण वार, कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार, वेल ना पाइया पंडती जे हुवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण, थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई, जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई, किव कर आखा किव सालाही क्यों बरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै, नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोहै, पाताला पाताल लख आगास आगास, कोड़ कोड़ कपाल थके वेद कहने कबात, सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात, लेखा होए तो लिखी है लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप, साल आही साल आहे एती सुरत न पाइया, नदियां अतः वह पवहें समुंद न जानिया है, समुंद शाह सुल्तान गिरह सीधी माल तन, कीड़ी तुलना हो बनी जे तिस मानो न विसरै, अंत न सिवती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत, अंत न जापै किताकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण किते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे, एह अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए, बड़ा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, ए बड़ ऊंचा होवे कोए, तस ऊंचे को जाने सोए, जे बड़े आप जाने आप आप, नानक नदरी कर्मी दात, बहुता कर्म लिखा न जाए, बड़ा दाता तलना तमाए, केते मंगह जोद अपार, केत्या गणत नहीं विचार, केते खपत टह बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केत्या दुख भूख सद मार, एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाने जेतिया मोह खाए, आपे जाने आपे दे, आखे से पे कई के, जिसनों बख्शे शब्द साला, नानक पातशाही पातशाह।
अमूल गुण मूल व्यापार अमूल व्यापारी मूल भंडार अमूल आवह अमूल ल जाय अमूल पाए मुला समाए अमूल धर्म मूल दीवान अमूल तोल मूल प्रवान अमूल बख्शीश मूल निशान अमूल कर्म मूल फुरमान अमूलो मूल आख न जाए आख आख रहे लिव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करे बख्याण आख है ब्रह्मे आख अंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है किते किते बुद्ध आख है दानव आख देव आख है सुर नर मुन जन सेव किते आख है आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ता आख न सकै कई के जे बड़ पाव ते बड़ होए नानक जाने सचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवा रंग अवार सोदार के हा सो कर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक संखा केते वावन हारे केते राग परि सो कही अन केते गावन हारे गावे तुन पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी गावे अंदर दासन बैठे देवते अंदर नाले गावे है सद समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्न पाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे थारे सही तुदन गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन पाई कर कर वेख किता अपना जब तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद जोड़ी ध्यान की करें बेपूत खिंथा काल कुआरी काया जोगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश भुगत ग्यान दया भंडारण कटकट वजनाद आप नाथ नाथी सब जानकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश सयादेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक माई युगत व्याई तिन जले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस भावै तिव चलावै जिव होवै फरमान ओह वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता हे विडाण आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुगे को वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सोई कावार कर कर वेखै सरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख हो है लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तराहा पत बबड़िया चढ़िया हो या कीस
सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर जो पैन है जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगति छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक अयोतम नीच न कोए राती रुती स्थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होई विचार सच्चा आप सच्चा दरबार इथै सोहन पंच प्रवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड का यो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्म काड़द कड़ी है रूप रंग के वेश केती

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪਾ ਛੰਦ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਵਰੰਜਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਤ ਨੈਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਦੇਖ ਬੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤ ਹੁਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣੇ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਨ ਮਹੀ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਹੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਈ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਟਾਹੀ, ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਏਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕਾਏ, ਨਮਸਤੰਗ ਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਖਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਯੋਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਾਸਰਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ, ਨਮਸਤਾਸਜਵੇ, ਆਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਾਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਪੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਾਸਤ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵਕੰਦੇ, ਨਮੋ ਵਸਤਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ, ਨਮਸਤਾਸਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਸੁਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਵਭੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਵਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਵਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਪੂ ਹੈ ਲੇਖਾ ਪੇਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ, ਅਦੇ ਹੈ ਅਪੇ ਹੈ ਜੀਤਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਦਰਮਾਨ ਨਿਦਾਨ ਤ੍ਰਿਵਰਗੈ ਸਰਗੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਜਾਦ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਪਰਣ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਹੈ ਜੂਜ ਹੈ ਚੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਸੂਜ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ, ਗਮ ਹੈ ਜਮ ਹੈ ਭੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਬਹਾਇ ਗਾਏ, ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਰ ਹੈ ਨੀਕ ਹੈ ਫਰੇਕ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ। ਨਮੋ ਸਰਵਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਦਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਵਾਦ ਵਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਬਰਬੰਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾਸੇ ਸਮਾਸਤੀ ਬਭੂਤੇ, ਕਲੰਕ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਸਿਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੰਗ ਪਰਮ ਬਿਰਦੇ, ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਬਾਣੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ,
अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमास्तं शनाने नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समातुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता अदो उर्धरदंग गंगोघर्ता पारं परम परमेश्वरं ब्रोजबालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं कामं समातु ब्राजी समातुदा सुदामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीता वे हैं प्रभु आजूंगा दे सब पेश है पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज तीन दाने नमास्तुंग नरनाथी नमास्तुंग परमाथी नमास्तुंग गंजे नमास्तुंग पंजे नमास्तुंग काले नमास्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमदानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृष्टं नमो सर्व कृष्टं नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सदा सर्वधार दिस दिंग निवासी चरपट छंद दव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अला कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद तव प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरुष अपार सर्वमान प्रमाण देव पेवाद उदार सर्वकालक सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप प्रसाद नाम ठाव न जात जाको रूप रंग न रेख आद पुरुष उदार मूर्त अजोन आद शेख देश और न पेश जाकर रूपरेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुई फैले वन राग नाम काम विहीन पे खुद दाम हुन जाहि सर्वमान सर्वधर्मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन अकीन रूप अनेक खेल खेल अखिल खेल अंत कोबर एक देव पेव न जानी जे बेदौर कतेव रूप रंग न जात पात सो जानी कह जेव आत्मात्मा जाति जाकर जन्म मरण महीन चकर वकर भरेज चतर जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के बिखय जग जा पैजे जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप परम वेद प्राण जाक नेत बागद नेत कोट स्मृत प्राण शास्त्र नावही बोचित आदमूर्त अनादमूर्त आद देव अनादमूर्त थप सभज थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरुष अपार सर्व विश्व रचियो सुयम पवगण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म तामस भरम रहत भूदला कपेश अंग राग न रंग जा कहे जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी कानसत एक पुरुष अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत अंगहीन भंगन आत्मेक पुरुष पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाक है नेत भागत नेत कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बोचित मद पार छंद तव प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन पंग उपमानंग अनुभव प्रकाश निस्दन अनाश आजन बाह शाह
Rajan Rajupan and Panu, Devan and Devupama Mahan, Indran Indra Balan Balu, Rankar Ranka Kalan Kalu. Anuputa Anga, Papa Anga, Gatamita Par Gunagan Odaru, Mungan Pranamu Nirpane Kamu, Atadot Parjanda, Amitigatya Kanda, Alistha Karma Drista Dharma, Sarva Pranadia, Anadanda Badia, and Chajri Shanda, the Prasad, Govinde Makandev Dharia Pari, Hariyang Kariyang Rundamea Kame, Pujanga Prayat Shanda, Chatter Jakar Karta, Chatter Jakar Hartal, Chatter Jakar Dane, Chatter Jakar Jane, Chatter Jakar Varati, Chatter Jakar Parti, Chatter Jakar Pale, Chatter Jakar Kale, Chatter Jakar Paste, Chatter Jakar Vaste, Chatter Jakar Mane, and Chatter Jakar Dane, Chachri Shanda. Now Satrana Mitrana Barmana Vitra, Na Karmana Kaya Janamungajai. Na chitrana mitra pariyam pavitrae Pratista disa drisa krisae Pagvati shandh dag prasad Khatate Kya asaj desa kya apaj pesae Kya apaj loka kya adat sokae Kya abtut barna kya vipud karna Kya rajang prabahe kya dharmang tujae Kya asok barna kya sarva parna Kya jagatang griti kya shatrang shatriyae के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपम रूपे के आदो देव हैं के आप अपेव हैं के चतरंग बहिना के कह दीनाए के रोजी रजा कर ही मैं रहा गए के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के आप बोल गुनाह हैं के शान शाए के कारण कुनंद हैं के रोजी दहंद हैं के राज करीम हैं के सर्व कर्म करीम हैं के रोजी दहंद हैं के राज के रोजी दहंद है के राज करहीम है के कर्मन करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने है के सर्वत्र गावने है के सर्वत्र पावने है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेस्त है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र बाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेस्त है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेस्त है के सर्वत्र माने आए सदैव प्रधाने आए के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमं फहीम है के आकल अलम है के साहेब कलाम है के हुसन अल वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सली खत्म दाम है गनी मल सकास्ता है गरीब वल परास्ता है बुलंदल मकान है जमीन वल जमान है तमीज वल तमाम है रूज वल नदान है हरी फल जी मर जाए कि यकीन है अनेक वल तरंग है भेद है पांग है आजी जो नवाज है गनी मल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है पर भुक्त प्रवाह है सुजोत सुधा है सुधा गुण स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त ब्राज हैं सदा सर्व साज हैं समस्त सलाम हैं सदा बल काम हैं निर्वाद स्वरूप हैं गाद हैं नूप हैं ओंगाद रूप हैं नाद स्वरूप हैं अनंगी अनामे तरभंगी तरकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगादे सुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपौक्त स्वरूप हैं सजय सूत हैं के नरकं प्रणाश हैं पृथ्वी प्रवास हैं के नरक के निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है वे भुक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है निरोक्त सदा है वे भुक्त प्रवाह है अनोक्त स्वरूप है प्रजोक्त अनूप है चाचरी संभ अपंग है नंग है पीख लेख है अभर्म है कर्म है नाद जुगाद है
अजय वह भूत दूत हैं, अनाशव दास दंत बंद हैं, अभक्त विरक्त है नाश प्रकाश हैं, न चिंत है सुनिंत है लेख देख है अलेख पीख टाय गाय असंभ है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है अजात है जाद है चरपट छंद दव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं क्षता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत दव प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं भूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाधे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे दृभंगी दृकामे नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते नरसाकं श्री कामितोमी गाय सदैवं प्रवाहे जय अजाय भगवती छंद दग प्रसाद के जाहर जूर है कि हाजर हजूर है मेसल सलाम है समासल कलाम है के साहिब दिमाग है के उस नल चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है के सरबंग कली है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमल कमाल है के उस नल जमाल है गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरी फल सिकान है हिरास लिफकान है कलंकं प्रणास है सुमा तुल निवास है अगंजल गनीम है रजाय करहीम है सुमासुल जुबा है के साहेब किरा है के नरकं प्रणास है बस तुल निवास है के सर्वल गवान है हमें सुलरवान है तमामल तमीज है सुमा तुल अजीज है पारंग परमीश है सुमा तुल अधीश है अधीशल लेख है मे सुल पेख है जमीन उल जमा है मई कुल माह है करी मुल कमाल है जरो जमाल है के अजलिंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है के अज विस्वरूप है कि मैं तो भूत है के मैं तो बसा है कि आत्म प्रवाह है के अजलिंग नंग है कि मैं तो अपंग है मद पार शब्द तक प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भर अगंज हर नर पर पांजू अन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नरे अखंडु भर नरे मांडू अन पवे अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदाम अन शिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मित उदार जल थल मांडो दिस विश अभांडो जल थल महंत दिस विश बेअंत अन पवे अनाश द्रत दर्द राश आजन बह कै सदार ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम जजरण नाम अंश जगात अंश जगात अंश जगात अज जन बात अन चंज गात अंधरंज बात अंटुट भंडार अंठट बार अडीठ धर्म अतडीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद दव प्रसाद करणालया है हर कालया है खलखंडन है मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के धरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांड है कलखंड है परदे पर है करुणा कर है अजप अजप है थप थप है अग्रता ग्रता अमृत अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अग्रता ग्रता तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अग्रता ग्रता अमृत अमृत है अजबा कृत है अमृत अमृत है निर्नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालया है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है यर गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग अदतंग स्वरूपे
नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादंब भूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो भांग भांगे अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिपंगी दृगाले अनंगीय कामे एक अक्षरी शंग अजय अलय भय भय अपूजू अनाश काश अगंज पंज लख पख अकाल दयाल लेख अपेख अनाम काम अघटा अनाथे परमाथे जो नियमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात शंद नमास्तल प्रणामे समास्तल प्रणासे अगंजल नामे समास्तल निवासे निरकामंग बभूते समास्तल स्वरूपे गो कर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी गनिमल गनिंदा समास्तल निवासे अजैब बभूते गजैब गनिमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर जकर भारती चतर जकर भुगते सुयाम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंग अंग बभूते चतर जकर भारती चतर जकर भुगते सुयाम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंग अंग बभूते तव प्रसाद सवैये एक ओंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख फिर कर योग जति के सूर सुधारदन शुद्ध सुधा दे कर संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखे प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूँ ते करती मने करती के माते मतंग जर जर संग अनूप दंग सुरंग सवारी कोट दुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारी भारी बजान के भू पली विद न्याव शीस न जात विचारी ते भय तो काम भय भूपत अंत को नंग पायम पदारी जीत फिर सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग नगारी गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारी ऊत भवैख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारी सरिपत सरि भगवान भजे बन अंत कुंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दैद मदान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण देव कुरान जमीन जवान सवान के पिख है पौन आहार जदिय तारु सब सब चार हजार के देख है सरि भगवान भजे बन भूपत एक रति बन एक न लिख है शुद्ध सुबहादुर अंत सुशासनादुर जान दलेंगे पारी गुमान पर मन मैं कारू पर्वत पंखा लिना लेंगे तोर हरी नमरोर मासन माते मदंगन मान मलाएंगे श्री पाद श्री भगवान कृपा बेनु त्याग जहान नदान चलाएंगे वीर पार बड़े बड़े आर विचार सारगित अर्भ सैया तोर तदेश मलंद मासन मात ज्ञान के मान मलैया गाड़ी गुड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं चकचार लवैया साहिब शरी सब गोसर नायक जाट का नेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साचर भूत भवैख भवान जपेंगे जीव जते जल में थल में पल ही पल में सब थाप जपेंगे पुन पुन प्रतापन बाढ़ जैत दोन बापन के भाव पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अब लोग जपेंगे मानवेंद्र गजेंद्र निरात बजौंतर लोक राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात अंत फसे जम भाष भरेंगे जे नार श्रीपद के प्रसय पाग ते नार फेर न दे तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नहात फिरो लिये सात समुद्र अन लोग गयो पर लोग गयो बास की उपख्यान पर बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो साच कहो सुन ले सब है जन प्रेम की ओत नहीं प्रभायो काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग करे लटकायो काहू लखे वर वाची दिशा मैं काहू बछा घोसी सुनवायो कहू बतान को पूजत है बास कहू मृदान को पूजन तायो गूर करो और जो सभी जाग
शरी भगवान को भेद न पायो, को भूतान को पूजित है बास, को मृदान को पूजन थायो, पूर करया और जो सभी जग, श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, पातशाही दसवीं कब वाज बेनती जाओ पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए जत की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पार, हमरे दोष्ट सब तुम गावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी वस मोर परिवार, सेवक सिख सब करदार, मोर रक्षा निज कर दे करे, सब बैरन को आश करे, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अबर न त्याऊं, जो बर जाहो सो तुम से पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चन चन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे है, मरण काल का त्रास निवरे है, पूजो सदा हमारे पछा, सरिया सोजो करे हो रक्षा, राख ले हो मैं रख नहारी, साहिब संत सहाय प्यारी, दीन बंद दुष्ट के हंता, तुम्होपुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबधरा, काल पाए शिवजी अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, भेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत मनायो, देव दैत जशन बजायो, आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को सेवगुण सुख दियो, सदरन को बल मोहबल कियो, कड़कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चिटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना है, कड़कट के बट बट की जाना है, जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दी अपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे दर्शव हूँ, जेते बदन श्रेठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद हरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील नाद संभ, ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा, तांको कार पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा सेव, निरंकार का चीन तन भैव, आप

संसारा एक रूप अनुप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत जखिनी उत्पज खान बहोर रज दीनी कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं समट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई चंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग्रो दोष्ट जिते उठव तुद पाता सकल महेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष्ट दुखता वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके कालो निकट नह आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रक्ष डर तद काला कृपा दृष्ट धन जाह नो ताके ताप धन कम हरिओ रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट सास न कोई एक बार जिन तुम सुभारा काल भाज ते दाय बार जिन नर नाम त्यार कहा दार्द दोष दोग तेरा खड़ग के तुम शरण त्यारी आप हाथ दलो उबारी सर्व ठार महो साई दोष दोग ते ले बचाई सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने हो सिमरत शास्त्र भेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने हो सरी असबान कृपा तुमरी कारू मैं ना कहे हो सब तुहे बखाने हो दोहरा सगल द्वार।

राम कली महला तीजानंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पायो सहज सेती मन भजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बणियाइयां शब्दों तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो कह मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर दे रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जन इच्छा सब बुझाइया सदा कुरबान कीता गुरबिट हो जिस दियां वडियाइया कहे नानक सुनो संत सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभा गए हर सुभा गए शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कहे नानक तह सुख हुआ चित कर अनहद बाजे साची लिवै बन देन माणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुदबाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया इस ना होर थाओ नाही शब्द लग सवारिया कहे नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा कलिवे कटे ग्यार अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा जिनका शब्द सच्चा सवारिया कहे नानक आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सुजन पावे पावे ता सुजन दे जिसन और क्या करे वे जारिया एक परम भूले फिरे दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पाया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सुजन पावे आव हो संत प्यारे हो अगथ की करें कहानी अगथ केरी के द्वारे पाई है तन मान तान सब सब गुरु का हुक्म ने पाई है।

गावो सची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवे हृदय तना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग बाणी। कहे नानक सदा गावो हो सची बाणी, सतगुरु बिना होर कची है बाणी। बाणी तां कची सतगुरु बाजों होर कची बाणी, कहिंदे कचे सुणदे कचे कची आख वखाणी। हार हार नित करें रसना कहया कछु न जानी, चित जन का हृदय माया बोलन पैरवाणी। कहे नानक सतगुरु बाजो होर कची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जत जड़ाओ, शब्द रतन जद मन लागा हे हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जसनों दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ, शिव सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम बरदाए। हुकम बरदाए आप देखा गुरमुख से बुझाए, टुकड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे कस सिओ लिबलाए, कहे नानक आप करदा पे हुकम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। तेही गुणी संसार ब्रह्म सुद्धा सुत्या रहण व्याणी, गुर कृपा देसे जन जागे जिन हर मन वसिया भुले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिब लागे जागत रहण व्याणी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है वडदाता जे अगर मैं आहार पहुंचावे। ओसनो केहे पोह न सके जिसनु अपनी लिब लावे, अपनी लिवे आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक वडदाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया। माया गन सवे को जेही करता खेद रचाया, जाओ तिस पाणो ते जमया परवार भला पाया। लिब छुड़की लगी दृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जो तर विसर।

बेनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहि अरदास, जियो पिंड साधु तेरी रास। तुम मात पिता

बौड़ी आपने आप साजो आपने रचना दुई कुदरत साजी है कर आसन दिठोचा दाता करता आप तुंद।

पौड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक करमा बाहरे दर ढोना लहनी ताव दे एक मूल ना बुझना अपना अण हुंदा आ।

गुरुदेवे नमः अस्पदे सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जास विशुंभर एक नाम जप अगंत अनेक वेद प्राण सिमरत सुधाकर कीने राम नाम एकाखर किनका एक जह जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक कौन संग मोहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दूख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ विघ्न न लागै प्रभ कै सिमरन अनगिन जागै प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्वन धान नान घर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दुर्गह मानी प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जन आप सिमराए नानक ताका लागो पाए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उधय मूचा प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुधै प्रभ कै सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभ जी बसह साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरह से धनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन प्रवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह तन अंध कनेरे प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे संत कृपाते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे प्रभु कै सिमरन कभु न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन नेचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन को प्रभ मया नानक जन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊह नाम तेरे संग सहाई जय महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै जय मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं करै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावहु सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप्त होए सुखिया लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जप्त निस्तरै अनक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जप्त आघावै जेह मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइयै नानक गुरमुख परम गत पाइयै झूठत नहीं कोट लख वाही नाम जप्त तह पार पराही अनक विघ्न जह आय संघार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कब हुन धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साध कै संग
जह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। जह पैंडा महा अंधक भारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा कोना सुजानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जह महाभयान तप बहु काम, तह हर के नाम के तुम ऊपर शाम। जहां त्रखा मन तुझ आकर्ख है, तह नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साधक मात। हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंगर से रंग एक, नानक जन कै बिरत विवेक। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते करे। पार जात इह हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सबते उत्तम हर की कथा, नाम संत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजस नाहि हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म करिया, सगल त्याग मन मध्ये फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम कर बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास पीसर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अस्व है वर भूम दान। न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौ कि होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही कौ बहु साधना करै, मन ते कभू न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, शुद्ध कहाँ होय काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पत्त बहमूच। बहुत स्याणप जमका पौ व्यापै, अनक जतन कर कृष्ण ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट अपाव दरगह नहीं सिझै। झूठ सुनाही ऊह पयाल, मोहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जमडानै, गोविंद भजन विन तिल नहीं मानै। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जेको मांगै, साध बिना की सेवा लागै। जेको अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै। जेको अपनी शोभा लोरै, साध संग एह होमै छोरै। जेको जन्म मरण ते डरै, साध बिना की सरणी परै। जिस जन कौ प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सौ गनिए सबसे ऊंचा। जाका मन होए सगल पीरीना, हर हर नाम तिन घट घट कीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, देखै सगल सृष्टि साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन कौ धन तेरो नाओ, मिठावे कौ नाव तेरा थाओ।
निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा को देव हो दान कर्म करावन हार स्वामी सगल घटा के अंतर जानी अपनी गत मित जानो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोई सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपो जीव सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जे घट वसै।

नानक निधि नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सी गारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तव नानक सीझै जे प्रसाद धर उपर सुख वसै सुत भ्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदाई पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रचना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काड ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखनहार तिस स्यो प्रीत न कर गवार जा की सेवा नव निंद पावे ता स्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान तूरे जा की टहल पावे दरगह मान तिस बसारे मुग्ध पजान सदा सदा एह भूलनहार नानक राखनहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अस्थिर करमाना जो होवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्दव प्रीत भस्म संग होए अंधकूप में पत्त बिकराल नानक काट ले हो तब दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया शब्द नाहीं कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा कहाँ दिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह या हो जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूब कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुए नानक कहो न सी जय बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण विखोट गुवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार जां कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहो अपनी दे रास खात पीत बरत अनब उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रख है प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सरपुर होवत जान अनेत बिरख की छाया त्यों रंग लावै ओ बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लप्त रहो तह अंध अंधार बटाओ स्यों जो लावै नेह ताको हासन आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या होमे ममता माया। मिथ्या राज जोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता। मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्द कोह रह। मिथ्या नेत्र देखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेख विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी ताकत की आर जा, साज बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताक दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाय। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निराख दाम। धन धन ते जन देह कट बस्यो, हर नाओ नानक ताक बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख गंड लावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्म मरै। जिस कह अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख करै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप माने। आप है आप करत ने बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत। जिस भावै तिस लय लड़ लाए, थान समंदर रहया समाय। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावहे, तिसको सिमरत परम गत पावहे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, किसै तिहाए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पै सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा तिहाई है ध्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावै, तिसै त्याग कत अगर लुभावै। जे प्रसाद सुख तेज सोई जय, मन आठ पहरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मान, मुखता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, नानक पत से ती घर जावै। जे प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावो तिस राम सुनेही। जे प्रसाद तिर ओला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै। जे प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपू कम पहरे जय, मन तिस सिमरत क्यों आल सुखी जय। जे प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी, मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलख धना, राग प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई। तिसै त्याए जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करह पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रह, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोल है अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है, जे प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कहो मूल न मन हो विसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ता को जाप जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे

नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुनमिता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे सुमानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग नकत हूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध वडाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कब हूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर रहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग नांदिर्थ जावै। पार ब्रह्म साध हृदवसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाव। साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जानै, जेता सुनै तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुणते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बन आए, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसुदा को कोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागै जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपने है सब से नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक दिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार।

ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंबुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता, ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी

ज्ञानी का कथया न जाए अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।

निस्तार अस्तपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेख नेत्र साधु की टहल संत संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब से जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दुखिया पर हरय मन की बासना मन ते टरय इंद्री जत पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद राम नाम आत्म सोद राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमृत बुझ है मूल सूक्ष्म मह जान अस्थूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उतार पस प्रेत मुग्ध पात्र को तार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगान काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नगरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो।

ऐसा अमृत तैसी भिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन त्रावण जोग, प्रभ पावै सोई पुन होग, पसरे आप होए अनंत तरंग।

लोक उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवृति बहुविध अंक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

अमर पय सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुणगाव है, आत्मरस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास सुमारे, नानक हुए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को, नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्तरी। कर्ण क्रावन करना जोग जो तिस पावे सोई होग, खिन महथा उथा पुनहारा अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजा हुक्म सुमावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब मह रह समाई, प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै ता पात्र त्रावै, प्रभ भावै बिन सास सिर राखै प्रभ भावै ता हर गुण भाखै, प्रभ भावै ता पत ते उधारै आप करै आपन विचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिरसै अंतर जानी, जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै, कहो मनुख ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै, इस कै हाथ होए ता सब किछले जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दस्तावै निमख माही चार कुंठ फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले, थिन महनीत कीर्त को राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज, जा का दृष्ट कछू न आवै तिस तत्काल दह दुष्प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गणै जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बंत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर्ष रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करै बहुपात कबहू सोय रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा कबहू भेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिज ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साल संगत एह पावै उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नामृत एक रंग सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक न पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखे न कोय संत कै दुखन तन प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए की गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागै संत के दुखी को सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म

ही दुख ना सुख ते टरै, संत के दोखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावै ता ले मिलाए, संत का दोखी अध बीच ते टूटै, संत का दोखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दोखी को ध्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर के थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दोखी की जड़ किछ नाही, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दोखी पवन राखन हार, नानक संत भावै तै ले उबार, संत का दोखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ही धन नहीं त्रापै, संत का दोखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहीं दोहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सदम त्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस भावै सोई थया, संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दोखी सदा तहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दोखी की पूजा न आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत का दोख न त्रिस्त कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मेट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसह त्याग हो साध गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिस नो कृपा करे तिस अपन नाम दे, बड़ भागी।

सोई लग। जिसनु कृपा करह वड भागै, नाम जपत पावह विश्राम। नानक तिनपुर कौ उत्तम कर मान, जो किस करै सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाय होवै सो होए। करणै हार पुछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माहे समाए। ओए सुख निधान उन्हों बनाए, आपस को आप दीनो मान। नानक प्रभ।

नरंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मह राख मानक की तू प्रीत त्याग तिसते परै नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपाण धान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरणे पाओ नानक कै मन इह नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फो तिसका मंत्र न जाने होर अनंद रूप मंगल सब जाकै सर्व थोक सुनिया है घर ताकै राज महराज जोग मह जोगे तप मह तपीसर ग्रस्त मह भोगे त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाके लीला की नित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन

स्वाद प्रभ के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वड भागी जन

सास सास सुमारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रखे, ताकि घर में कोई

हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करह प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड भागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस कौ कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्ज रास। सेवा करत होय निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले।

ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन, जन मह पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सैस सियाणप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन पेख पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुरख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हो संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए ना।

बोल न पहुंचत प्राणी, अग्न अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होय। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिथे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही। अपने चरित प्र

अपनी भक्ति लाए। अष्टपदे जाचक जन जाचा प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो चरण।

पर प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे दुर्लभ कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनता पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होए दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे किया जाने। सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न मह राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ है। गुरपुरै तत् है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो इहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो, आप जपो अवरह नाम जपाव हो। भगत पाए तरिया संसार, बिन भगती तन होती छार। सर्ब कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर इही सुआओ। नेत्र हो पेख दर्श सुख होए, मन बिकसै साध चरण धोए। भगत बिना कह मन तन रंग, बिरला को पावै संग। एक भक्त दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सुकरणी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगा।

फिर जात। अष्टपदी, जब अकार इहो कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहोक से व्यापत। जब अपन आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। अपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभु केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अग्न पार, तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहज स्वभाय, तब शिव सतत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निड्र कवन कत डरे। अपने चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नासी सुख अपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तह किसे भूख कवन तृप्तावे। करण करावन करना हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहाँ को चीन। जब आपन आप उतार है, तो सगन अपसगन कहाँ।

अपमान अनक प्रकार की ओ बख्यान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच है तो नानक एक है जह अवगत भगत कह आप जह पसर पासार संत प्रताप दोहूं पाख का आप है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतुक कर अन

दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव जाने आप अंतरजामी रहो व्याप प्रतपाल जीअन बहुपात जो जो रचो सो तिस त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करहे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास करमान्या करनहार नानक इक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक कौ सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाए इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अनदन पूजे गुर के पैर एह लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का एह सुहाओ आठ पहर प्रभ देखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बस है तिस साच परीखिया मन तन नाम जपहो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निभ खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहर न आवह जाहे तिसते दूर कहाँ को जाए उबरै राखन हार त्याए निर्भव जपै सबल भव मिटै।

उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताके नित न आवत काल अमर भये अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परदास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक घट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नौ निध अमृत प्रभ का नाम देहि मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कह न जाई अचर्ज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहया भगवंत धर्म माहे आकाश पयाल सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसे आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसन तरमाहे चार कुंत दह दिसे समाहे तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुरुप्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख तस्यर सूर नक्षत्र मह एक बाणी प्रभ की सबको बोलै आप अडोल न कभू डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल न पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत धर रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नाथ नानक दिन मैं एहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्म करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियोही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन मिक्त कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप देखनहारा सगल समग्री जा का तना आप न जस आप ही सुना।

ताकि गत मित कहीं न जाए, दूसर होए तसो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एह जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर पेख, सास सास सिमरह गोविंद, मन अंतर की उतर चिंद, आस नित त्याग हो तरंग, संत जना की धूल मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के भर ले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित जित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाल एह रतन, संत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तन कै साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होए सेवक की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निधि खेप हमारे, प्रभ की औसत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नवनिद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत्का वेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख तने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग महता।

हरनाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए पीत तिस जन आवै हर प्रभ जीत जन्म मरण ता कर दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै।

0: नानके गुण नाम सुखमनी सब ते ऊच ताकि सो बाबनी नानक एह गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबु दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874।
5: Guru charnan vich jud ke baithi Guru Roop Sath Sangat Ji, Waheguru Ji ka khalsa Waheguru Ji ki fateh।

गुरु जी के चरणों में बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आओ अपने इष्ट अपनी आशा से उपासना दे देव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अगे श्रद्धा के नाल प्रणाम करते हुए नमस्कार करते हुए, नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया पवजल विचों कढ के मुकत पदार्थ माही समाया, दुनिया दे मिथ्या नाम रूप तो उठा के सतनाम जपाउण वाले गुरु नानक देव जी का जी का ध्यान करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे नमस्कार करिए। ते उस तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर जो शुभायवान भगत कबीर जी दे श्लोकां दे अंतर्गत ये पहला श्लोक है जो पूर्व प्रकरण चल रहा है। भगत आत्मा होण दे लई तिन्ना शरीरां तो अध्यास तोड़ना पैंदा है। अपनी खोई हुई सिमरती नूं सिमरन दे द्वारा चेते विच लियाना पैंदा है। जो कबीर जी ने किया है, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपरना। शब्द अर्थ इस तरह है, एक शब्द अर्थ हुंदा है, एक पाव अर्थ हुंदा है, एक लक्ष्य अर्थ हुंदा है। शब्द अर्थ साधारण शब्दां विच जो गुणी जना ने किया है वो इस तरह है कि कबीर जी कहंदे ने मेरी रसना दे उत्ते राम नाम वस गया है, मेरी माला राम दा सिमरन करना मेरी रसना ही माला बन गई है, मेरे स्वास ही माला बन गए ने। आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम, ओ राम ओ परमेश्वर ओ गुरु दा नाम जो साडी आत्मा दे विच वसदा है, ओ कदे भी साडे तो मेरी मैं तो हर दिल विच बैठी ईगो तो परे जो आत्मा है, हंकार तो परे शुद्ध आत्मा है, उथे साख्यात परम आत्मा विराजमान है। पर जो साख्यात है, कबीर जी कहंदे ने भगत कबीर जी कि आद जुगादी, एक आद हुंदा एक जुगाद हुंदा। आद दा मतलब है जो जगत दे बनन तो पहले जो अव्यक्त सत्ता सत चित आनंद वाहिगुरु है, जुगाद दा मतलब जो जुगा तो पहले जगत दे बनान तो पहले जो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कई बार कई युग बने, एक युग एक बारी चार चार युग नहीं हुए। अकाल पुरख की देह में कोटक विसन महेश, कभी ये सोचा है कि गुरबाणी जिस वाहिगुरु दे लड़ सानू लाउंदी है, जो सिमरन कलयुग विच सानू गुरु नानक देव जी ने दिता है, उस सिमरन दा दाता किन्ना वड्डा है। सब ते वड समरथ गुरुदेव सब सुख पाई तिस किसे, शरीरक सेवा मानसिक सेवा बौद्धिक सेवा कई तरह की सेवा होया करती है। इस समय कबीर जी कहंदे ने कि जुगा जुगा तो जो उस राम नूं आत्मा दे विच जो वसिया पिया है, जिस तो भगत जन उसकी बंदगी करके उसनूं हिरदे विच त्या के उसनूं अपनी आत्मा दे रूप विच पछाण के अविद्या दा आवरण परे करके कूड़ दी दीवार तोड़ के सच्यार हो जांदे ने और सुख भी पाउंदे ने ते विश्राम भी पाउंदे ने। आज जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम, सारे ही भगत नामदेव जी सदना त्रिलोचन दुनिया में जदों तो युगा युगा तो भगत हुए ने वो परमेश्वर तो बिना नहीं रहते। भगत किसनों कहते ने, जिस दी एक भी भक्त हुंदा एक भक्त हुंदा। भगत का मतलब हुंदा है जिस दी वित्ती खंडित नहीं है, करे भगत आतंक के चाहे प्रभ अपने सिओ रहया समा। जेड़ा एक जिसनों हर वेले परमेश्वर नू मिलन दा एक चाओ हुंदा है। ज्ञान दियां सत भूमिका ने
ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਹੀ ਚੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਆਂ? ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਸੱਤ ਹੀ ਚੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀਆਂ? ਔਰ ਹੇਮ ਬਰਫ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਡ ਨੇ, ਬਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਝੰਡੇ ਸੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਮੋਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਪ ਹੈ, ਨਾ ਤਪ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਪ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਵਹਿਵੋ ਹੋਏਗੋ ਤ੍ਰਹਿਵੈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਹੋਏਗੋ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੀ।

कोई रसना मांझी ना रहे, परमात्मा नू अपने हिरदे दे विच प्यार नाल बुलाइए। हे वाहिगुरु, आप कदों मिलोगे? जे ए मनुखा जीवन मिले बिना चला गया तां दोबारा ज्यों मन फल पाके पोए गिरे बोहर न लागेदार। कबीर, मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारंबार, इससे प्रकरण नू अगे लैके चलांगे कि सिमरती विच राम आ जाए, सिमरती विच वाहिगुरु आ जाए। एक बार सिमरती च वाहिगुरु आ जाए तां कहिंदे ने इक्की कुल्लां दा उधार हुंदा, उह संत बन जांदा है।

छोटे तू पंचदा किसा पार तारा मैं रूप होके हम राजे नू चलिया सी मैं तड़के भगत

अब दिल तो बचिया दिल घुबरा लिया हस हस के हस के गले दे विच पानी फांसी दिया रखिया नू जेना जेना ते मुलाकात होने लग पई।